0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए

0: साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अभी बज गई पास सुबह के 6। आज 6 बजते ही राउ रेडियो दोस्त नेपाली हाजिर बड़ी वो प्रोग्राम लेके जोन हाँ आपन दे आपन देखभाल। सबसे पहले स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ये प्रोग्राम में हम बतावेनी ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चली बिना देरी के लिए शुभ आरंभ कर लियो अपना कार्यक्रम के, जिमे हम बताएं सबसे पहले असरकारी कुछ घरेलू उपचार। इसे जोड़ के दर्द में एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 8 से 10 बार पी, इसे जोड़ में आराम मिली। जोड़ पर नीम के तेल के हल्का मालिश करे पर आराम मिलेला। लौकी के गुद्दा तलवा पर मले से ओकर जलन शांत होला। शरीर में कौनो भी भाग या हाथ पैर में जलन होके पर तरबूज के छिलका के सफेद भाग में कपूर और चंदन मिला के लेप करे से जलन शांत होला। सरसों के तेल में बराबर के पानी मिला के फेट ली व घमौरी पर लगाई, इसे शीघ्र आराम मिली। सिर दर्द होके पर गुनगुना पानी में अदरक व नींबू के रस व थोड़ा सा नमक मिला के पिए से आराम मिलेला। बच्चा के काली खांसी ठीक ना होके पर बांस के एक टुकड़ा के जला के ओ भस्म के शहद में मिला के 3-4 बार चाटे से बच्चा की खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाए। तो दोस्त लोग इस तरह असरकारी कुछ घरेलू नुस्खा, अब चलिए हम बता दें कुछ लाभकारी घरेलू नुस्खा। जख्म पर पड़ल कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। दाढ़ दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द के जगह रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी सेवन कराई। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओकर पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। अंजवाइन के कुछ देर चबावे के बाद 1 कप गर्म पानी पी लेवे से पेट दर्द से छुटकारा मिल जाला। नींद ना आवे के बीमारी में ज्यादा मात्रा में दही खाई या 1 ग्लास पानी में 2 छोटा चम्मच शहद मिला के पियल लाभप्रद होला। दाढ़ में दर्द होके तल लौंग के तेल लगावे से दर्द समाप्त होला। तेज सिर दर्द होके पर पिपरमेंट गर्म करके सिर पर लगावे से आराम मिलेला। हिचकी आवे पर तुलसी व शक्कर खा के पानी पिए से लाभ होला। मुंह में छाला होके पर नारियल खाए से छाला शीघ्र ठीक हो जाला। भूख ना लागत होके तसौफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खाएं। मसूड़ा फूल जाए पर सरसों के तेल में नमक मिला के आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा पर मसाज करे से तकलीफ खत्म हो जाला।

0: व शक्कर के अदरक वाला चाय पिए से पेट दर्द ठीक होला। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात पानी कुछ आसान उपाय सेहत बनावे खातिर। खान पान के गड़बड़ आदत, कसरत ना कैल और तनाव के अलावा धूम्रपान एवं शराब पिए से रक्तचाप बढ़ल, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के खतरा युवा अवस्था में ही बढ़ रहल बा। जैसे दिल के दौरा पड़े के आशंका पैदा होला, रवा जीवन शैली में बदलाव लाके ये जोखिम के कम कर सकता नहीं। जैसे में अर्जुन के पेड़ के छाल भी धमनी में अवरोध दूर करे और रक्तचाप के नियंत्रित करे में काफी उपयोगी सिद्ध भइल बा। छाल के दो तरह से लिहल जाला, एकर 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट ली या 10 ग्राम के 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में खाली पेट रोज सुबह ली। स्वाद खातिर मिश्री या खंड मिलावल जा सकेला। ये मिक्सचर में शहद ना मिलाई, काहे कि एमे सैचुरेटेड फैट होला। और एक अन्य रसायन दिल के कमजोर करेला। अर्जुन के छाल से गर्मी निकलेला जबकि शक्कर से ठंडक आवेला। ये तरह दोनों के कोनो मेल नहीं के। ये प्राकृतिक उपचार के अलावा सेहतमंद जीवन जिए खातिर नियमित परहेज से रहल, नियमित शारीरिक व्यायाम कइल और डॉक्टर के नियम पूर्वक जांच करावे के भी सलाह भी दिहल जाला। हमेशा याद रखें कि दिल के दौरा पड़ल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होला। सीना में दर्द के शिकायत के अनदेखा ना करी और ना ही खुद से दवा उपचार ली, बल्कि हृदय के उपचार कोनो विशेषज्ञ के देखरेख में होके के चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानल जाओ खुजली के घरेलू इलाज। त्वचा में खुजली चले, दाद हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए पर खुजला खुजला के हाल बेहाल हो जाला और ये लोग के सामने शर्म भी आवेला। यदि रुआ कोनो क्रीम या दवा लगावे के नहीं चाहत या लगावे पर भी आराम नहीं के होत, तो घर पर ही ये चर्म रोग नाशक तेल बना के लगाई, इसे ये व्याधि दूर हो जाए। जैसे में तेल बनावे के विधि ई है कि नीम के छाल, चिरैता, हल्दी, लाल चंदन, हरड़, बहेड़ा, आंवला और अडूसा के पत्ता सबके समान मात्रा में ली। तिल्ली के तेल आवश्यक मात्रा में। ये सब आठों द्रव के 5-6 घंटा तक पानी में भिंगा के निकाल ली और पीस के कल्क बना ली। पीठी से 4 गुना मात्रा में तिल के तेल और तिल से 4 गुना मात्रा में पानी लेके मिला के एगो बड़ा बर्तन में डाल दी और एकरा के मंद आंच पर इतना देर तक उबाली कि पानी जल जाए, सिर्फ तेल बचे। ये तेल के शीशी में भर के रख ली और ये जहाँ भी खुजली चलत हो के, दाद हो के, वहाँ ये पूरा शरीर पर ये तेल के मालिश करी। ये तेल चमत्कारी प्रभाव करेला, लाभ हो के तक ये मालिश जारी रखी। मालिश स्नान से पहले या सोते समय करी और एकर चमत्कार देखी। दोस्त लोग, अब उस समय आ गेल बा जेमे दीपाली ली है रुआ से जाए के अनुमति। तरक्की रुआ आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। आजमाई ई सब अचूक नुस्खा के। आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 अमजद पर।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
8: क्या था कि दुर्योधन के पास माया थी, माया क्या नहीं करा सकती। मैं दुर्योधन की उन चालों का साक्षी हूँ क्योंकि मैं वो आंख हूं जो हर काल में, हर युग में खुली रहती है। मैं आकाश हूं। मैंने देखा है कि किस तरह दुर्योधन ने अपने पिता पर दबाव डालकर पांडवों को वारणावत भिजवा दिया और फिर शकुनी से मिलकर एक दूसरा खेल शुरू किया। सत्ता के खेल में गलत सही के मतलब बदल जाते हैं। दुर्योधन तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पांडव उत्सव से कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए पांडवों के वारणावत के लिए निकलते ही उसने अपने खास आदमी प्रोचन को बुलवाया

0: शकुनी का आदेश था कि मेरा आना और जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कुमार।
1: ओ, ये अच्छा किया तुमने। और पुरोचन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि आगे भी किसी को तुम्हारा भेद नहीं मिलेगा।
0: मैं वचन देता हूँ कुमार, आपका और मेरा भेद मेरे प्राणों के साथ ही जाएगा।
1: अब ध्यान से सुनो पुरोचन, पांडव माता कुंती के साथ वाणवत का उत्सव देखने के लिए निकले हैं। मैं जानता हूं कि जमुना के इस पार से गंगा के उस पार तक कारीगरी में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, तो तुम्हें वाणवत के घने वन में उन पांडवों के लिए एक भवन का निर्माण करना है, और ऐसा सुंदर भवन होना चाहिए जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो, जिसकी सुंदरता देखकर पांडवों की आंखें बाहर आ जाए।
0: पर क्या इस भवन का निर्माण गोपनीय रहेगा कुमार?
1: बिल्कुल, इस भवन का निर्माण एक रहस्य होगा, क्योंकि वो कोई साधारण भवन नहीं होगा। सुंदर उद्यान के बीचों बीच बने इस भवन में सुंदर कक्ष होंगे।
0: ऐसा ही होगा कुमार, ऐसा ही।
1: अब असली बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उस भवन का निर्माण ऐसे पदार्थों से करना होगा जो आग की एक चिंगारी से ही जलकर खाक हो जाए।
0: क्या ये आप क्या कह रहे हैं कुमार?
1: जो तुमने सुना वही कह रहा हूँ मूर्ख। तेल, घी, चर्बी, लाख, जो लगा सके लगाओ, पर ध्यान रखना, यदि वो एक चिंगारी से नहीं जला तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा।
0: जी जी जी, जी कुमार जी।
1: और सुनो, भवन निर्माण होते ही तुम पांडवों को पूरे मान सम्मान से वहां ठहराने के लिए बुलाओगे। उस भवन में पहुंचकर वो सुख और चैन की सांस लेंगे, और वो चैन की सांस उनकी अंतिम सांस होगी।
0: पर ये कैसे होगा कुमार?
1: बताता हूं, रात में जब पांडव थके हारे गहरी नींद में सो रहे होंगे तो तुम उस भवन में आग लगा दोगे। आग के ताप से उनकी आंख खुलेगी, पर आग इतनी जोर से भड़की होगी कि उन्हें वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लाख, घी और चर्बी से बनी दीवारें और छत धधकती हुई उनके ऊपर आ गिरेगी, और बस कुछ ही क्षणों में सब कुछ समाप्त। और यार, राजमहल में सबको लगेगा कि बेचारे पांडवों के साथ कैसी अनहोनी हो गई। दो चार दिन का शोक होगा पुरोचन, और फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, समझे?
2: वाह, क्या आनंद आ रहा है। यहाँ का पूरा वातावरण ही शिवमय है। देखो माँ, लोग महादेव की भक्ति में कैसे सुध-बुध खोकर नाच रहे हैं।
3: महाराज, धृतराष्ट्र ने हमें भक्ति के इसी रूप का आनंद लेने के लिए ही तो यहाँ भेजा है पुत्र।
4: हमें महाराज ने नहीं, दुर्योधन ने भेजा है माँ। और अगर दुर्योधन ने हमें यहाँ भेजा है तो अवश्य उसके पीछे कोई अर्थ छिपा है।
3: पुत्र, दुर्योधन हमारा भला नहीं सोच सकता, पर हमें तो अपने भले के लिए सोचना होगा ना।
4: केवल सोचना नहीं माँ, कुछ करना होगा। उस दुर्योधन को ये आभास कराना होगा कि अगर उसने हमारा बुरा करने की कोशिश की तो हम भी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
3: हाँ पुत्र, मैं समझती हूँ। आज तक मैं भी तो तुम सब के लिए लड़ रही हूँ, और मैं ही क्यों, तुम पांडवों के अधिकारों के लिए तो कुरुकुल के ज्येष्ठ भीष्म भी लड़ रहे हैं।
4: तुम इसे लड़ना कहते हो माँ? कमाल है, वो हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है और हम जान बचाते फिर रहे हैं। पितामह ने भ्राता युधिष्ठिर को युवराज पद तो दे दिया, पर युवराज का सम्मान कहाँ है, अधिकार कहाँ है? दुर्योधन को जरा सी पीड़ा हुई तो महाराज ने उत्सव देखने के बहाने हमें अपन भेज दिया।
2: धृतराष्ट्र ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा भीम। अगर दुर्योधन के मन में खोट है तो
4: उसके मन में खोट है तो हम यहाँ क्यों चले आए बड़े भैया? आपने मना क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ वन में अगर इतना ही आनंद है तो दुर्योधन भी हमारे साथ चले,
3: मेरे पुत्र भीम, राजमहल की कोई भी स्थिति तुमसे छुपी कहाँ है? मैं जानती हूँ कि कौरव तुम्हें देखना नहीं चाहते, पर मेरे लिए सबसे पहले तुम सबकी सुरक्षा है। तुम सुरक्षित रहोगे तभी तो अपने अधिकार के लिए लड़ पाओगे।
5: कुंती ने गलत नहीं कहा था, जान है तो जहान है, पर उनकी जान तो चली गई होती अगर ऐन वक्त पे विदुर को दुर्योधन की साजिश की भनक न लग गई होती। फिर तो महाभारत की कहानी उसी समय खत्म हो जाती।
6: हे महादेव, ये क्या सुन रहा हूं मैं? निर्दोष पांडवों को मारने की ऐसी घृणित चाल, किस अंधकार में जा रहा है ये कुरुकुल? यदि कौरव अपनी योजना में सफल हो गए तो महाराज प्रतीप का यह महान वंश डूबने में समय नहीं लगेगा। पांडवों जैसे वीर और महान आत्मा इस वंश में फिर कभी जन्मेंगे? क्या महाराज धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुरुकुल के नाश के लिए पैदा हुए हैं? मुझे शक्ति दीजिए महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पांडवों को बचा सकूं।
7: युवराज युधिष्ठिर की जय हो।
2: अरे भाई, अरे अरे अरे गिर जाऊंगा, मुझे कंधे से उतारो भाई।
4: अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कंधे पर नहीं उठाया।
8: ये सही कहा, नहीं तो जाने कितने लोग दब जाते तुम्हारे नीचे।
7: जय हो कुमार भीमसेन की।
4: अरे नहीं नहीं भाई, मुझे मत उठाओ, मैं ऐसे ही चलता हूँ।
7: चलिए चलिए, आइए हमारे साथ।
3: हमें चलना कहाँ है?
9: प्रणाम माता, मैं हस्तिनापुर का व्यापारी हूँ पुरोलाल। महाराज पांडु महान देवात्मा थे, हमारे लिए ईश्वर समान थे वो। इस धरती पर आप सबके चरण पड़ गए, ये धरती धन्य हो गई। हमें बड़े भाग्य से आपकी सेवा का अवसर मिला है। आप लोग शिविर में चलकर भोजन ग्रहण करें।
4: अरे वाह, भोजन कहाँ है भोजन? चलो भाई जल्दी जल्दी चलो।
8: देखा माँ, भोजन की बात सुनते ही भैया कितने प्रसन्न हो गए।
10: बस कुछ दिनों की है ये प्रसन्नता, फिर तो सीधा यमलोक की यात्रा होगी।
9: आप सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। चलिए चलिए माताजी, आप आ गए,
8: आओ चलते हैं।
11: वाह वाह, देखिए माता, वहाँ है घोड़ों की दौड़। तुम घोड़ों को देखकर कैसे प्रसन्न हो जाते हो नकुल भैया?
12: जैसे भैया भीम भोजन देखकर।
4: अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे तो घोड़ा दौड़ाना भी आता है, अभी दिखाता हूँ।
2: अरे संभल के गिरा मत देना। अरे बेचारे घोड़े को तो छोड़ दो भीम, तुम्हारे भार से दबा जा रहा है।
8: हाँ भैया, आप बहुत भारी हैं।
4: अब घोड़ा ही दुर्बल है तो इसमें मेरा क्या दोष है?
3: बस करो पुत्र बस, चलो अब चले, भोजन के बाद घुड़सवारी कर लेना।
12: 100 मन भोजन खाने के बाद तो भैया और भी भारी हो जाएंगे माँ।
3: तत, तुम सब मेरे भीम की हंसी मत उड़ाओ। चुपचाप चलो, सब पहले भोजन करो।
8: आओ चलते हैं।
13: उठो भांजे, जब देखो सोते रहते हो। अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया।
14: क्या मामा? आपके
6: अरे मामा, ये तो युवराज का मुकुट है।
13: अरे तुम्हारे लिए लाया हूँ भांजे।
6: पर मामा, मैं अभी युवराज बना का हूँ।
13: जल्दी ही बन जाओगे, पुरोचन कभी असफल नहीं होता। देखो देखो कितना भारी है ये मुकुट भांजे, तुम्हारी गर्दन है नाजुक और ये मुकुट है भारी। अभी से इसको पहनने की कर लो तैयारी।
9: आप सभी के लिए विशेष आसन बनवाया है, कुश का आसन। आप सबके बैठने से और पवित्र हो जाएगा।
4: भाई आसन तो ठीक है, भोजन कहाँ है पुरोलाल?
9: ये लीजिए भीम से, भोजन भी आ गया।
4: वाह, खीर हलवा मोदक शाक दही घी, सब एक से बढ़कर एक। भाई पुरोलाल, तुमने तो हमारी यात्रा सार्थक कर दी। वाह, आनंद आ गया।
9: अभी कहा, भोजन के बाद मैंने आप सबके लिए विश्राम का ऐसा प्रबंध किया है कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा आपको।
10: वैसा सुख फिर अगले जन्म में ही मिलेगा।
15: कौन कौन है वहां? अपना परिचय दो वरना।

0: महाराज को भी मेरी कोई सूचना मिलनी नहीं चाहिए, समझे?
1: किंतु आप कहां जा रहे हो?
0: कहां ना, कोई प्रश्न नहीं, समझो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं।
2: क्या है कि पांडवों में हमेशा से ऐसी कड़वाहट नहीं थी जैसी द्यूत वाली घटना के बाद दिखने लगी थी। उनकी पीठ पीछे लगातार साजिशें होती रहीं, पर वो तब भी हंसने मुस्कुराने के मौके निकाल ही लेते थे। उन्हीं में से एक मौका था वारणावत का, जब दुर्योधन की कुटिल चाल से अनजान पूरा परिवार अपनी मौज में था। पर खात भी तभी होता है ना भैया, जब इंसान उससे अनजान हो। नहीं, सोच के देखिए महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
10: आज ही आए SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0096-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सड़कों के पेड़ से गिरने से एक पासी की हो गई मौत। विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। और हथुआ विधायक के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ सदर विधायक सुभाष सिंह और जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने सदर प्रखंड के जगीरी टोला का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने जिला पदाधिकारी को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सभी किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि नवरात्रि शुरू होने से पहले उनके खाते में भेजी जाएगी। कृषि मंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक भी की और बाढ़ की स्थिति पर प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। इससे पहले क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
11: निश्चित तौर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है पूरी तहकीकात कर करके क्या कमी रही है, क्या लापरवाही रही है, इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद फिर इसका हम लोग आपस में विमर्श कर लेंगे।
10: प्रभारी मंत्री ने कहा कि बांध टूटने के कारणों की समीक्षा की जाएगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आखिर बांध टूटने के पीछे क्या कारण रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मंथन किया जाएगा और आगे से ऐसे कारणों की पुनरावृत्ति ना हो इस पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि 18 जिलों के किसानों को दुर्गा पूजा से पहले मुआवजा की राशि भेजी जाएगी। पूरे बिहार में 18 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और इसी को लेकर उन्होंने यह बयान गोपालगंज की धरती से दिया है। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर आज जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संस्था में धन जमा या निवेश करने से पहले उसकी वैधता एवं पंजीकरण की जांच करें। अधिक लाभ, कम समय में दोगुना पैसा अथवा असामान्य ब्याज का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें। बिना उचित दस्तावेज एवं रसीद के किसी को भी अपना पैसा ना दें। अपना एटीएम पिन, ओटीपी, सीवीवी, बैंक पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए लिंक, क्यूआर कोड अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लेन देन ना करें। बैंक खाता, एटीएम कार्ड एवं निवेश संबंधित दस्तावेज किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को ना सौंपें। किसी भी संदिग्ध लेन देन या वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल संबंधित बैंक एवं सक्षम अधिकार को सूचित करें। जिला प्रशासन ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि स्वयं जागरूक रहें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करें। हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर पंचायत के पिपरपाती गांव के चंवर में आज सुबह एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि लोगों ने शव को जब चंवर में देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफएसएल टीम के माध्यम से मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहां आवश्यक जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि पहले अज्ञात शव को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया था।

विद्युत की सप्लाई बाधित है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और लोग बाजार में सड़क पर हथुआ विधायक का पुतला दहन करने लगे और फुलवरिया के जेई के विरुद्ध भी नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की। इधर गांधी जयंती के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित मुखिया ने की। उप विकास आयुक्त निदेशक NEP और DPO सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर कार्यक्रम में भाग भी लिया। विशेष ग्राम सभा में भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर रिफॉर्म उत्सव का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को मिशन के प्रमुख प्रावधानों, रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में विकसित ग्राम पंचायत योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर काम करने के लिए बल दिया गया। पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों इत्यादि के पास आज भी नियमित गश्ती की गई। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा जिले के स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा छात्राओं एवं हॉस्टलों के आसपास नियमित गश्ती और निगरानी की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए छात्राओं एवं महिलाओं से संवाद कर उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद का रहने वाला आरिफ नवाज, जिसकी उम्र 15 साल है, बताया जा रहा है कि यह लड़का 2 तारीख से शाम 4 को घर से लापता हो गया है। परिजनों का कहना है कि यह शाम को 4 बजे करीब ई रिक्शा पकड़कर सांसामूसा बाजार आया था। इसके बाद वहां से इसके गोपालगंज जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह गोपालगंज भी नहीं पहुंचा और घर भी नहीं पहुंचा है। 2 तारीख से यह लड़का लापता है, जिसको लेकर परिजन परेशान हैं। 15 साल के इस लड़के का नाम आरिफ नवाज है और यह रामपुर दाऊद थाना कुचायकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने लोगों से सहायता की अपील की है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हंकार यादव को पकड़ा, जो महंत यादव का पुत्र है और बथुआ महुआ टोला थाना माझागढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जिला स्थापना दिवस पर देर शाम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी अम्बेडकर भवन में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने किया। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। उपस्थित लोगों का मन भी मोह लिया। कार्यक्रम में अजय तिवारी एवं समूह, शिवम खरवार एवं समूह, विनोद कुमार गुप्ता एवं समूह तथा SS डांस एकेडमी द्वारा गीत, संगीत और नृत्य की विविध प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं एवं कला संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान किया। इधर स्थापना दिवस पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले की विकास यात्रा, प्रशासनिक उपलब्धियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा भी की गई। अधिकारियों एवं कर्मियों ने जिले के सतत विकास, जन सेवा को और बेहतर बनाने तथा आम जन तक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पहुँचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला स्थापना दिवस जिले की विकास यात्रा को स्मरण करने के साथ साथ भविष्य की प्राथमिकताओं और जन सेवा के प्रति संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सर्वांगीण विकास एवं आम जन के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ ही समाहरणालय परिसर में उत्सवी माहौल भी दिखाई दिया। उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों ने जिले की निरंतर प्रगति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास की कामना भी की। इधर युवा आपदा मित्र के लिए फिर से 5 स्काउट गाइड के छात्र पटना के लिए रवाना हुए हैं। थाने जंक्शन से बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड की जिला इकाई के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें चयनित बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम में धीरज कुमार, नीतीश कुमार, रवि, शुभम और सिराज आलम पटना के लिए रवाना हुए हैं। बिहार के कोने कोने से पटना में आपदा मित्र के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम

0: 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
1: कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सड़कुल के पेड़ से गिरने से एक पासी की हो गई मौत। विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। और हथुआ विधायक के खिलाफ लोगों का फुट्टा गुस्सा।
0: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: दोस्तों, यह है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का एक सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब कहानी पहला बागी। करीब 7 फुट लंबा और बेहद ताकतवर जिस्म का मालिक असल में एक गुलाम था और भारी कदमों से अपने बाड़े की तरफ वापस जा रहा था। लग रहा था मानो पत्थर का कोई बुत चल रहा हो। उसकी देह का एक एक हिस्सा तराशा हुआ था और चमड़ी का रंग उतना ही काला और चिकना था मानो ग्रेनाइट चट्टान। वो स्पार्टिकस था, एक ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर यानी महान रोमन साम्राज्य में अपने मालिक के हुक्म पर चीखती भीड़ के सामने जानलेवा लड़ाई का खेल दिखाने वाले गुलाम। इस खेल में या तो जान लेनी थी या फिर अपनी जान दे देनी होती थी। बाड़े की तरफ जाते स्पार्टिकस के पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने मौत को इतने करीब से जाते हुए जो देखा था। स्पार्टिकस नया था इस खेल में। उसे पता नहीं था कि मौत ऐसे सामने आती है। वो तो लीबिया में सोने की खदान का एक मजदूर था, लेकिन किस्मत ने पलटी खाई और एक हमले में उसे और उस जैसे न जाने कितने मजदूरों को गुलाम बना लिया गया। हाट में उसे जानवरों की तरह खरीदा था बेटियाटस ने। बेटियाटस गुलामों का व्यापारी था। बेटियाटस ने उसे लड़ना सिखाया था, सख्त जान होकर आखिर तक लड़ना और बेदर्दी से कत्ल करना। आज की लड़ाई स्पार्टिकस की जिंदगी का पहला मुकाबला था और ये शायद आखिरी भी होता। कैपुआ में होने वाली इस लड़ाई में लोगों का मनोरंजन किया जाना था और ये आयोजन खास इसलिए भी था क्योंकि रोम से खुद सेनापति क्रेशस भी आया था। मजबूत और तगड़ा दिख रहा स्पार्टिकस बहुत पसंद आया था सबको और दूसरा लड़ाका ड्राबा भी। दिन के तीसरे पहर लकड़ी से बने गोल स्टेडियम में लोगों की काफी भीड़ थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था और आसपास के गांवों कस्बों से आए लोगों ने केपुआ गांव को गुलजार कर दिया था। ड्राबा पुराना ग्लैडिएटर था और उसने अब तक न जाने कितने योद्धाओं को ऐसे ही खेल के मैदान में मौत की नींद सुला दिया था। अपने प्रतिद्वंदी को मार डालने की बेरहमी ने उसे काफी मशहूर बना दिया था और गुलामों के व्यापारी ऐसे किसी भी बड़े खेल में उसे मोल ले जाते। स्पार्टिकस दिलेर भी था, जांबाज भी, लेकिन ड्राबा के मुकाबले नौसिखिया था। 1,000-1,500 लोगों की चिल्लाती चीखती भीड़ के सामने मिनटों में ही ड्राबा ने स्पार्टिकस को हरा कर जमीन सुंघा दिया था। भीड़ चिल्ला रही थी, रोमन सेनापति क्रेशस ने अंगूठा नीचे करके संकेत दिया कि हारे हुए गुलाम को मौत दे दी जाए। स्पार्टिकस ने साक्षात मौत को सामने फरसा लिए खड़ा देख आंखें मूंद ली थी। स्पार्टिकस आंखें नीचे जमीन पर पड़ा था और उसकी गर्दन के ठीक ऊपर था ड्राबा का त्रिशूल। भीड़ चिल्ला रही थी, क्रेशस का अंगूठा नीचे हो गया था। मौत का संकेत था ये। पूरी भीड़ एक नौसिखिए ग्लैडिएटर की मौत का तमाशा देखने के लिए बावली हुई जा रही थी। बेटियाटस खुश था कि खेल कामयाब हो गया, लेकिन गजब हो गया। स्पार्टिकस अपनी गर्दन पर त्रिशूल के आखिरी वार का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसके कानों में भीड़ की चिल्लाहट सुनाई दी। वो खुशियों की किलकारी नहीं थी, दहशत से भरी चीख थी। ड्राबा ने न जाने क्या सोचकर अपने हाथ का त्रिशूल निशाना साध कर सेनापति क्रेशस की तरफ फेंक दिया था, लेकिन ड्राबा का निशाना चूक गया और पलक झपकते ही क्रेशस के अंगरक्षकों ने ड्राबा को भालों से कोंचना शुरू कर दिया था। क्रेशस ने वहीं ड्राबा को मौत की सजा दी थी। खुलेआम खेल वहीं खत्म हो गया। बाड़े में वापस जाते हुए स्पार्टिकस यही सोच रहा था कि सेनापति ही नहीं, ये भीड़ भी मौत का नजारा देखने ही आई थी। हम गुलामों का ही खून बहना जरूरी है क्या? स्पार्टिकस के मन में बिजली सी कौंधी। और हम गुलाम हैं ही क्यों? इसलिए कि हमारी चमड़ी का रंग इन रोमनों से अलग है। स्पार्टकस के दिमाग में बवंडर उठ गया। तभी उसे ख्याल आया वेरिनिया का। वेरिनिया भी गुलाम थी। लड़ाई से पहले की सांझ स्पार्टकस और ड्राबा को आखिरी भोज दिया गया था। हर ग्लैडिएटर को यह भोज दिया जाता था। वहीं स्पार्टकस ने वेरिनिया को देखा था। भोज में खाना परोस रही वेरिनिया ने मुस्कुराते हुए उससे बस इतना ही कहा था, कल बचकर जिंदा आ गए तो यहीं मिलना मुझे। स्पार्टकस जिंदा बचकर आ गया था और अपने घाव धोते हुए उसे वेरिनिया का इंतजार था। सारे गुलाम स्पार्टकस को घेर कर खड़े हो गए थे। उनमें से कुछ स्पार्टकस जैसे ही मजदूर थे, कुछ रोमन सैनिकों द्वारा कैद किए गए दुश्मन देशों के सैनिक थे, कुछ रोम के ही थे लेकिन कानून की नजरों में अपराधी थे। स्पार्टकस से पहले ही उसका किस्सा यहां पहुंच चुका था। वेरिनिया आकर बैठ गई लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ड्राबा की मौत ने इन सब ग्लैडिएटरों को कुछ सोचने का मौका दिया था। एक ने कहा, मौत हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। स्पार्टकस, अब तुम वेरिनिया के बारे में सोचो। स्पार्टकस ने देखा मैयत के ऐसे मौके पर भी ये ग्लैडिएटर्स जिंदगी की बातें कर रहे थे। अचानक दरवाजा धड़ाके से खुला। बेटियाटस के साथ कुछ रोमन सैनिक अंदर आए और वेरिनिया को खींच कर ले जाने लगे। वेरिनिया रोमन सेनापति क्रेशस को पसंद आ गई थी। उसको अब क्रेशस के हरम में शामिल होने के लिए रोम ले जाया जाने वाला था। स्पार्टकस और उसके साथी देखते रह गए थे। रोती चीखती कलपती वेरिनिया को खींच कर ले गए थे रोमन सैनिक। स्पार्टकस खून का घूंट पीकर रह गया था। गुलामों के बाड़े का रसोईया बेहद बुजुर्ग था। स्पार्टकस से कहा था उसने, ये पत्थर जैसी देह क्यों बना रखी है? मौत तो आनी ही है, फिर इनका जुल्म सहते और उनका मन बहलाते हुए क्यों मरो? बात चुभने वाली थी। स्पार्टकस की आंखों के सामने से उसकी प्रेमिका को उठा ले गए थे सरकारी सैनिक। सारी रात स्पार्टकस को नींद नहीं आई। थाली में रोटी ज्यों की त्यों पड़ी थी। चांद सर पे आ गया था। उसने थाली उठाई और बगल के कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। स्पार्टकस ने पुकारा, मैक्सिमस। मैक्सिमस भी जगा था। मैं स्पार्टकस। मैक्सिमस बाहर निकल आया। स्पार्टकस ने थाली बढ़ाई तो मैक्सिमस ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा लिया। दोनों अगली कोठरी की तरफ बढ़ गए। फिर तो कॉर्पोफोरस, मेविया, फ्लेमा, रोटी सबके कमरे में घूमी। सब ने रोटी का टुकड़ा खाया और सब एक राय हो गए। आज तो सुबह भी देर से हो रही थी। सबके सब ग्लैडिएटर सुबह होने का उतावली से इंतजार कर रहे थे जब मार्सिलस बाड़े में आता था। मार्सिलस यानी इन ग्लैडिएटरों को हथियार चलाना सिखाने वाला। मार्सिलस आया तो आदतन उसने आते ही कोड़ा भांजना शुरू कर दिया। कभी मैक्सिमस को एक कोड़ा, कभी मेविया को दो लाते हैं। स्पार्टकस की बारी आई तो उसने पूरी ताकत से गला पकड़ लिया था मार्सिलस का। हल्ला मच गया। गुलाम बागी हो गए। मिनटों में गुलामों ने वेतन पर जीने वाले रोमन सैनिकों के हथियार छीन लिए थे। छावनी को आग लगा दी गई थी। देखते ही देखते कैपुआ के हर घर से गुलाम छुड़ा लिए गए थे। सब थे उनमें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग। सबसे बुरी हालत थी लड़कियों की। रोमन मालिकानों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। कैपुआ पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। मेमनों की तरह बिलखती भीड़ अपनी आजादी का यकीन नहीं कर पा रही थी। 350 लोगों की यह भीड़ जंगलों की तरफ भाग निकली, जिनमें सिर्फ 90 लोग ही ग्लैडिएटर थे। ग्लैडिएटर थे यानी लड़ना भिड़ना जानते थे। उन्हीं 90 लोगों ने आसपास के गांवों से भी गुलामों को छुड़ाना शुरू कर दिया। महीने भर के भीतर 30,000 गुलाम आजाद करा लिए गए। स्पार्टकस अब इन लोगों को लेकर किसी तरह जंगल में छिपा था और ये सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। क्या सारी उम्र ऐसे ही जंगलों की खाक छानती बीतेगी? रोमन साम्राज्य की राजधानी तक स्पार्टकस की बगावत की खबर पहुंच गई। दुश्मन कब आ टपके इसके लिए हमेशा तैयार रहना था। स्पार्टकस के समर्थक भी आ जुटे थे जो मुक्ति के संघर्ष में उसका साथ हथियारों के लिए धन दौलत देकर कर रहे थे। स्पार्टकस ने डरे हुए लोगों की बेतरतीब भीड़ को सेना में बदलने का फैसला कर लिया। अचानक एक दिन पेड़ के नीचे ऊँघते स्पार्टकस के हाथों में किसी ने दान के रूप में सोने की बालियां रख दी थी। वेरिनिया, तुम? वेरिनिया को देखकर स्पार्टकस चौंक उठा। वेरिनिया क्रेशस के हरम से भाग निकली थी और जंगल जंगल पहाड़ दर्रे पार करके स्पार्टकस को खोज निकाला था। अगले दिन मुंह अंधेरे स्पार्टकस जब उठा तो उसके बाजुओं की मांसपेशियां फड़क उठती थीं। अब वेरिनिया साथ आ गई थी तो स्पार्टकस के लिए चिंता की कोई वजह नहीं थी। अब जरूरी था जंगलों में जहां तहां बिखरे लोगों को ऐसे लड़ने के लिए तैयार करना कि आजादी के घमासान में एक एक आदमी 100 के बराबर लड़ता नजर आए। स्पार्टकस ने खुद ऐसे ग्लैडिएटरों को चुना जो शानदार लड़ाके थे। इनका काम था घरेलू कामगार के रूप में खटने वाले गुलामों को हथियार चलाना सिखाना, दुश्मन को खत्म कर देने तक लड़ने लायक बनाना। उधर रोम में स्पार्टकस जैसे अदना गुलामों की बगावत से खलबली मच गई। रोम के सेनेटरों को बगावत में हुए नुकसान की चिंता नहीं थी, गुस्सा था गुलामों की बढ़ती हिम्मत का। सारे गुलाम आजाद हो गए तो रोमन साम्राज्य के खेतों में काम कौन करेगा? कौन सड़कों पर झाड़ू मारेगा? नालियां कौन साफ करेगा? गुलाम नहीं रहे तो चमचमाता रोम कहां होगा? रोमन सेनेटरों ने फैसला किया, बगावत को कुछ इस सख्ती और बेरहमी से कुचला जाए कि आगे से कोई गुलाम आजाद होने का ख्याल तक सपने में नहीं सोच सके। रोम की सेना हथियारों से सज धज कर निकल पड़ी। न जाने कितने घुड़सवार, न जाने कितने ही भाला चलाने वाले, कितने तीरंदाज, कितने तलवारबाज। रोम के सैनिक चींटियों की तरह उस घाटी की तरफ कूच कर गए जहां स्पार्टकस और बाकी के लोगों के छिपने की खबर थी। रोम की सेना के इस अभियान से स्पार्टकस के माथे पर भी बल पड़ गए थे। इसलिए नहीं कि वो रोमनों से या किसी और की शक्ति से डर गया। स्पार्टकस तो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन उसी दिन जी गया था जिस दिन उसकी पहली लड़ाई थी ड्राबा के साथ। स्पार्टकस को चिंता थी उन 30,000 लोगों की जो उसके नाम की उम्मीद पर जंगलों में आ गए थे। उनमें कुछ बीमार थे, कुछ की पीठों पर पड़े कोड़ों के निशानों में घाव गहरे थे। सबसे सताई हुई थीं जवान औरतें, जिनमें से अधिकतर किसी न किसी रोमन मालिक के बच्चे की मां बनने वाली थीं और अपने ही जैसा एक और गुलाम पैदा करने वाली थीं। स्पार्टकस की बगावत और रोम की सेना के अपने सर पे आ धमकने की खबरों के बीच 8 महीने का फासला था और इस बीच वेरिनिया और स्पार्टकस के बीच के सारे फासले मिट गए थे। वेरिनिया अब स्पार्टकस की पत्नी थी और अगले महीने किसी भी दिन वो मां बन सकती थी।
12: नहीं, हम अब और गुलाम पैदा नहीं होने देंगे,
11: स्पार्टकस अपनी सोच में भी चीख पड़ा तो सोती हुई वेरिनिया जाग गई थी। स्पार्टकस को बेचैन देखकर वेरिनिया ने पूछ ही लिया, लड़ाई से घबरा रहे हो? स्पार्टकस कुछ नहीं बोला, बस सामने कतार में सोए हुए बेघर बेबस लोगों की तरफ उंगली उठा दी, अपने घर परिवार से बिछड़े बेचारे शरणार्थी। अब स्पार्टकस के फैसले पर ही उनका भविष्य निर्भर करने वाला था। हम इन सबको कहीं दूर ले जाएंगे जहां ये लोग हम लोग शांति से गुजर बसर करेंगे, खुद हल चलाएंगे। भले ही 1 जून की रोटी मिले, लेकिन वो रोटी आजादी की होनी चाहिए, स्पार्टकस ने वेरिनिया की आंखों में झांकते हुए कहा था। वेरिनिया बोली, इसके लिए हमें रोमन साम्राज्य की सरहद से निकलना होगा। स्पार्टकस ने उगते हुए सूरज की ओर देखते हुए कहा था, हमें समुद्री डाकुओं की मदद लेनी होगी, हम उनसे जहाज खरीदेंगे और अपने सभी लोगों को समंदर के उस पार ले जाएंगे। समुद्री डाकुओं ने शर्त रखी थी, अगले हफ्ते भर के भीतर स्पार्टकस अपने लोगों के साथ समंदर के किनारे उनके ठिकाने तक पहुंच जाए तो सौदा पक्का, वरना उनके लिए घर बार समंदर ही था, वो निकल लेते। इन डाकुओं के लिए एक जगह ज्यादा दिन तक टिकना ठीक भी नहीं था। स्पार्टकस अपने लोगों को लेकर निकल पड़ा था। दिन रात चलते हुए थके हारे लहू लुहान उसके लोग डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचे तो डाकुओं का मुखिया उनको नावें देने से मुकर गया था। जितनी रकम के लिए वो स्पार्टकस को नावें दे रहा था उससे थोड़ी ज्यादा रकम उसको रोमन सेनापति क्रेशस से मिल रही थी और उसके कहने पर वो मुकर भी गया था। अब आगे समंदर था, पीछे थी धूल उड़ाती आ रही रोमन साम्राज्य की विशाल सेना। स्पार्टकस ने वेरिनिया की तरफ देखा, मन में शायद शक के बादल थे। अब युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं जानती हूं तुम युद्ध टालना चाहते थे, तुमने कोशिश भी की, लेकिन अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये देखो, गुलामी की पीड़ा और यातना से मुक्ति पाने के लिए एक जन सैलाब तुम्हारे लिए अपनी पूरी निष्ठा समर्पित कर आजादी की कल्पनाओं में डूबा हुआ है। तुम्हें लड़ना ही होगा स्पार्टकस। वेरिनिया ने स्पार्टकस का उत्साह बढ़ाया। समंदर के किनारे उस ऊंचे टीले पर चढ़कर वेरिनिया ने गुलामों की सेना को चिल्ला कर कहा था,
12: आगे समंदर है, पीछे मौत है।
11: और फिर थोड़ी गहरी सांस लेकर भीड़ से पूछा, लड़ोगे? गुलामों की सेना ने जोरदार जय घोष किया, जिसका मतलब था स्पार्टकस की अगुवाई में निरीह गुलाम लोगों का जन सैलाब अपने अपने हथियारों से क्रेशस की सेना से लड़ते लड़ते कट कर मर जाने को तैयार है। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी। 3 पहर तक लड़ाई होती रही और चीखों, तलवारों की खनखनाहट और तीरों की साए साए के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लड़ाई थमी तो खून की नदियां बह निकली थीं। एक बार फिर ताकतवरों ने कमजोरों को हरा दिया था। स्पार्टकस के ज्यादातर सैनिक मारे गए थे, लेकिन अब भी 1,000-1,500 गुलाम बचे थे जिन्हें रोमन सेना ने कैद कर लिया।
12: तुम में से स्पार्टकस कौन है?
11: सजे धजे और बार बार बिदक रहे घोड़े पर चढ़े रोमन सेनापति क्रेशस ने कैद किए हुए गुलामों की उस भीड़ से पूछा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। स्पार्टकस सर झुकाए कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा 16 साल के एक लड़के ने आगे आके कहा,
12: मैं हूं स्पार्टकस।
11: फिर 60 साल के एक अफ्रीकी अश्वेत बुजुर्ग ने कतार से आगे आकर कहा,
12: मैं हूं स्पार्टकस।
11: फिर क्या था, देखते ही देखते 250-300 आदमियों की कतार लग गई और हर कोई यही कह रहा था,
12: मैं हूं स्पार्टकस।
11: सेनापति क्रेशस के माथे पर बल पड़ गए। उसे धुंधली सी याद थी कैपुआ गांव के उस खेल की, जब उस पर एक गुलाम ने त्रिशूल फेंक कर हमला किया था। उसका दूसरा ग्लैडिएटर ही स्पार्टकस था, ये तो उसे पता था। वो आम गुलामों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और ज्यादा लंबा था। उसने अंदाजे से ऐसे 8 लोगों को भीड़ में से बुलाया और आदेश दिया कि इन सब की कल खेल के मैदान में लड़ाई होगी। जो मैदान में हारेगा उसकी वही मौत, और जो जीतेगा उसको कल सुबह सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उधर वेरिनिया को रात में ही प्रसव का दर्द उठा और जंगल में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। उसने स्पार्टकस से पहले ही कहा था, लड़ाई में जीतेंगे तो आजाद वतन में साथ रहेंगे, हार गए तो मेरी संतान को आजाद इंसान के रूप में पैदा करना। इधर लड़ाई हो रही थी, गुलामी के पेट से आजादी पैदा होने की एक कड़ी कोशिश थी, और उधर वेरिनिया प्रसव पीड़ा के बाद एक आजाद शिशु के पैदा होने की उम्मीद में थी। लड़ाई का नतीजा अपने पक्ष में नहीं निकला था, लेकिन अब उसे स्पार्टकस से किया गया अपना वादा निभाना था। सुबह की किरणें अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थीं। आंचल में बच्चे को छिपाए वो बंदरगाह की तरफ भागी जा रही थी। समंदर में खड़ी नौका वेरिनिया का इंतजार कर रही थी, जो उसे और उसके बच्चे को आजाद इलाके में ले जाती। नौका तैयार खड़ी थी। वेरिनिया और उसकी 6 सहेलियां इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए निकल रही थीं। स्पार्टकस के बच्चे को बचाना जरूरी था, इस बच्चे को आजाद हवा में सांस लेना जरूरी था। एक सहेली ने दिखाया, दूर एक सलीब था जिस पर एक लंबा तगड़ा शख्स टंगा था। वेरिनिया के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, स्पार्टकस। सिसकती वेरिनिया ने अपना आंचल हटाकर अपने नन्हे बच्चे को स्पार्टकस की तरफ दिखाते हुए कहा, स्पार्टकस, तुम्हारा बेटा आजाद है। नौका समंदर में भागने लगी। पूरब में सूरज उगने जा रहा था, एक ऐसा सूरज जो आजादी की नई सुबह लेकर आया था। दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, हम एक बार फिर चल पड़ेंगे ऐसे ही किसी माइथोलॉजिकल कहानी के सफर पर, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
13: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
14: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
15: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
15: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
15: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
16: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
16: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
17: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
16: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
16: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
16: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
18: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा,
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM पर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604-34-48-652 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165,
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे

0: प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
2: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन दी गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार

0: करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हड़ौती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centers of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smith Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. An Asian Games 2.
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
6: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
7: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
6: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
7: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
6: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
7: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023-3586 या 95-9997-27-982।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड, नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: हेलो, सोचो कि ऐसे क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।
7: तो तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे। तो भौजी, आज सुबह ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज, और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-03-3586 या 95-999-27-982।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
12: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में सुधार। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तक भरे गए 33 नामांकन, 6 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। आदर्श आचार संहिता के कारण आज से शुरू होने वाली शिक्षकों की सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित, नई तिथि की होगी जल्द घोषणा। और एशियन गेम्स का आज हो रहा है समापन, जापान के नागोया में होने वाले समापन परेड में बिहार के कई खिलाड़ी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आई है, इससे हालात में सुधार हो रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले में विभिन्न स्थानों पर तटबंध और जमींदारी बांध टूटने से लगभग 8 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी इन क्षेत्रों की कई पंचायतों में फैल गया है। सारण में 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पानापुर, मकेर, सलेमपुर समेत कई प्रखंडों में सड़क संपर्क टूट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की सहायता से कई स्थानों पर राहत सामग्री गिराई जा रही है। इधर जिले में बाढ़ और आपदा की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित कम्युनिटी किचन और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने राहत और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तैयार किए गए रूट मैप की भी जानकारी दी।
1: जहाँ जहाँ भी प्रभावित हुआ है, हम लोगों ने लगभग 80 नावें और 17 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। लगभग 24,000 हम लोग ड्राई फूड राशन पैकेट वितरित कर दिए हैं और 18,000 पॉलिथीन शीट का हमने वितरण कर दिया है। और एज ऑफ नाउ 52 कम्युनिटी किचन इस जिले में चल रहे हैं। 25 अभी मेडिकल कैंप संचालित है और 8 मेडिकल मोबाइल टीम संचालित है, जिसके माध्यम से हम लगातार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं।
0: हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी है।
2: गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है। कई गांवों में बाढ़ का पानी कम हो गया है और लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और फसल क्षति को लेकर जल्द ही मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के 3-4 गांवों में भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जहां सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। वहीं डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी कम मापी गई है।
0: प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। 2 अक्टूबर को नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी में अभूतपूर्व जलस्तर

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कहा कि गंडक नदी का पानी 6 जिलों के निचले इलाकों में तेजी से फैला है। इन जिलों के 156 पंचायतों में 7,75,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद कई स्थानों पर ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट, सारण के रेवा घाट और वैशाली के लालगंज में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी में भी कई जगहों पर उफान बना हुआ है। गंगा नदी पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर तथा कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जबकि 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जाँच 7 अक्टूबर को की जाएगी। 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। विधान परिषद की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के कारण प्रदेश में शिक्षकों की सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा है। विभाग ने कहा है कि आयोग की स्वीकृति मिलते ही शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई तिथि जारी की जाएगी। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि आज से ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। राज्य में दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का लक्ष्य हासिल करने को लेकर 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी है। कमिटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार ने उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को रिपोर्ट सौंपी। समिति ने छोटे उद्योगों के विस्तार के जरिए रोजगार और लोगों की आय में वृद्धि को का रोड मैप तैयार किया है। समिति ने अपनी सिफारिशों में रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए अगले 5 वर्षों की एक कार्य योजना भी दी है। रिपोर्ट में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP को कम से कम 16% के स्तर पर बनाए रखने और क्षेत्रीय असमानता दूर करने पर बल दिया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन से कैसे बदल रही है देश में तकनीकी विकास की तस्वीर।
1: भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ देश में चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और इससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके।
1: बिहार सरकार ने जनवरी 2026 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को बिहार में आकर्षित करना है। प्रदेश के युवाओं में इस पहल से उत्साह है। उनके अनुसार इससे निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
3: मुझे बिहार के नागरिक होने के नाते इस बात की खुशी है कि बिहार सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2026 को मंजूरी दी है। अब बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनियां आती हैं तो बिहार के इंजीनियरिंग और तकनीक छात्रों के अपने ही राज्य में नए अवसर मिल सकते हैं। इस बात से मैं वाकई ताल्लुक रखता हूं कि बिहार का जो पिछड़ेपन का टैग है, इस मिशन से मुझे लगता है, जहां तक मैं एक नागरिक के नाते में सोचता हूं, कि शायद ये टैग अब हटने वाला है। इससे काफी फायदा मिलेगा, बिकॉज पूरी दुनिया जहां सेमीकंडक्टर के पीछे जा रही, आज बिहार ने उस दिशा में पहल किया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है और इससे काफी फायदा बिहार को मिलने वाला है। और साथ साथ यहाँ के जो ऊर्जावान युवा हैं, उनके लिए भी ये काफी अच्छा अवसर है जो इंजीनियरिंग तकनीक जो उस फील्ड में है, तो बड़ी अच्छी चीज है। बिहार सरकार का दिल से धन्यवाद इस मिशन को हमारे बिहार में लागू करने।
1: बिहार की यह पहल केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकॉन 2.0 के व्यापक लक्ष्य से भी जुड़ती है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: जापान के नागोया में आज एशियन गेम्स 2026 का समापन हो रहा है। भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे समारोह की शुरुआत होगी। एशियन गेम्स में शामिल भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बिहार के खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट।
4: एशियाई खेलों का समापन हो रहा है। भारत की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा तिरंगा लेकर समापन परेड में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। एशियन गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन का जलवा रहा। वैभव सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं पटना के बॉबी कुमार ने शतक टाकरा के पुरुष क्वाड्रेंट मुकाबले में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का प्रतिनिधित्व कर बिहार का नाम रोशन किया है। समाचार कक्ष से अमरनाथ प्रसाद।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा जमुई में देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट चालू होगा। दैनिक जागरण ने एशियन गेम्स से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। दैनिक भास्कर ने पटना स्नातक सीट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है नीतीश ने नीरज को दिया सिंबल, जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं अनंत। प्रभात खबर ने IRCTC घोटाला मामले की खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है IRCTC मामले में कोर्ट में पेश हुए लालू, राबड़ी और तेजस्वी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में सुधार। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तक भरे गए 33 नामांकन, 6 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। आदर्श आचार संहिता के कारण आज से शुरू होने वाली शिक्षकों की सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित, नई तिथि की होगी जल्द घोषणा। और एशियन गेम्स का आज हो रहा है समापन, जापान के नागोया में होने वाले समापन परेड में बिहार के कई खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने

0: लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
2: आज तो फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी
2: आज फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी लास्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए टाइम खत्म होने वाला है।
2: अरे मुझे लगा 12 बज रहा है, 12:30 बज गया।
1: हाँ, 12:30 होने वाला है।
2: और फोन आया था, अच्छा चले के बाद नहीं।
3: हेलो हेलो हेलो मैम।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। अर्चिता
3: मैम, मुझे गीत सुनना है।
1: गीत सुनना है? कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: गाड़ी बजा रही है, सीटी बजा रही है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
3: जितने
1: अच्छा जी, आप ठीक है ना?
3: हाँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
3: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है, नमस्ते।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मनोज भाई बोलते हैं
1: ना? भारती।
0: भारती जी, आज मनोज भाई ने किया है?
1: ना ना, वो क्या आज ड्यूटी चेंज हो गई ना थोड़ा सा।
0: अच्छा ठीक है, पचपरा से भाई बोलते हैं।
1: जी जी, क्या हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन बताए।
1: जी हम लोग ठीक बा।
0: चलिए, आज नदिया का पार का गाना सुना दी कौन?
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छा रुआ लगा तो उनने सुना।
1: अच्छा,
0: कैया सुना है?
1: इस रुआ हमारा काल सुने को मिली।
0: ठीक बा, कौन बात ना।
1: जी, और गाना क्यों के सुनवाई वो करे?
0: पूरा सब कुछ क्या आदमी का कट्ठे सब कोई क्या।
1: जी बिल्कुल, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
1: गाना प्ले करता नहीं?
0: जी
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। जी हाँ, सुरभि जी कैसे हैं? सुरभि जी ठीक हूँ, आप बताइए। जी हम लोग भी ठीक हैं।
11: रिकॉर्डिंग हो रहा है?
10: जी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है अभी।
11: अच्छा, तो क्या सुनना है
10: जी, बता दीजिए कौन सा।
11: कितना भी कर लगेगा
10: आपकी आवाज कटके आ रही है, एक बार और बता दीजिएगा।
11: कितना भी कर लेते हैं आप हमको कम लगेगा।
10: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है
11: आपको? और मेहमान हमको मेरी बहन है छोटी, उनको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को।
10: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4। थैंक
11: यू मैम,
10: वेलकम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 91.4 एफएम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: लाल बाबू बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम लोग का भी ठीक है।
1: फिल्म का नाम है जीगर।
0: गाने की बोल
1: आए हम बराती बारात लेके
0: जी, और गाने की तो सुनाना भी है।
1: लोहा है, काश है, गुटू है, सूरज है, रंजीत, रविंदर, संजय और आप है, आपका टीम है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजन 90.4 एफएम।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
9: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
10: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
9: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
11: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: मधु सर यहाँ से राजू कुमार बोल रहे हैं, साउंड सुनना है।
15: जी जी, कैसे हैं आप?
14: ठीक हूँ, अच्छा हूँ
15: जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: सारी लाल यादव के कोई नया सॉन्ग बजा दीजिएगा।
15: और गाना किसी को सुनाना भी है?
14: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी गुरु को।
15: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
14: ठीक है।

0: अल्ली फोर सुखा न सके।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: मैडम गाना सुनना है।
1: जी नाम बता दीजिए अपना पहले।
2: शमशेर।
1: और कहाँ से है शमशेर जी आप?
2: पानीपत से।
1: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दिल में टूट गया शीशे का कसम, दिल में टूट गया पत्थर का जवाना था।
1: जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरे पापा को, जितने सुनने मेहमान उनको सबको।
1: जी वैसे क्या करते हैं आप?
2: काम करते हैं।
1: काम करते हैं मतलब क्या काम?
2: बोता चुनते हैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है, तो
2: 10 साल का हूँ।
1: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले करे तब?
2: हाँ प्ले कीजिए।
1: जी जी सुनते
2: हैं। थैंक यू मैडम,
1: वेलकम
2: ये गाना प्ले करने के लिए।
1: जी सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070 32042 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: गोपाल ओचा ग्राम का गवास
15: जी, जी क्या हाल चाल है आपका?
16: मक्का की कटाई चल रही है।
15: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
16: और क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज?
15: गर्मी भी पड़ रही है।
16: गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तेज, और मक्का की कटाई चल रही है। और क्या,
15: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए आपको सुनिएगा,
16: गाना सुनना है वो दिल का क्या कसूर फिल्म का, वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो पूरे जाता है।
15: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
16: सभी को सुनवाएंगे, ये रेडियो सुनते हैं सभी को, रिमझिम वाले को और सुनील साहू जी, ज्योति साहू, जीतन जी, नरेश प्रजापति को, उनको सुनना।
15: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैडम, जाना समझ चाहते हैं मैडम।
1: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: जितेंद्र दागर बात कर रहे हैं, बिना जिला का दुबाशा मध्य प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैडम जी, अभी रंजन चल रहे थे।
1: जी, तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो मक्का कटाई चल रही है, मैं तो नगीने का काम करता हूँ, जयपुर में चलता है।
1: अच्छा, हाँ तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: गाने से बोल है अंजलि का, अंजलि मेरे अनुमानों के पंख लगा। गाने डेडिकेट भी करना चाहूंगा दोस्तों को शेयर करना चाहूंगा, दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा।
1: बिल्कुल, नाम ले लीजिए, बताइए।
0: गोपाल ओझा भी है, सुनील साहू भी है, राकेश है, गोलू है, अटल है, सारों को रहेगा और आपको रहेगा, और दिल्ली भी छोटा जुड़ रहे हैं, रेडियो रंजन से सबको रहेगा।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी, S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े।

0: है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: जी आप नॉर्मल में बोल रहे हैं, भारती में बोल रहे हैं?
1: जी मैं भारती बोल रहे हैं।
2: हम सुधीर कल बोल रहे थे, करेंगे वो जिला देवर झारखंड से।
1: हाँ जी, क्या हाल चल रहा
2: है? और
1: हम तो ठीक बने, रहो बताए रहो कैसन बानी?
2: हम एकदम बिल्कुल ठीक हुआ।
1: क्या होता है अभी?
2: हाँ, क्या होता है, जो अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी बात घर में ही रहुआ से हम पहली बार भोजपुरी में बात करते रहे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: जी हमारा से उतना भोजपुरी बोले कि नहीं, क्या होता है, हम कोशिश कर भोजपुरी, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी बोलने।
1: भोजपुरी
2: अच्छा से बोल लेते, कोशिश कर रहे की कहीं मिस्टेक न हो जाए। आज हम भरत व्यास शर्मा के को निर्गुण सुना दी था।
1: निर्गुण तो सुनने को करें।
2: जी जी, और डेडिकेट रही सबसे पहले रोवा के, जितने आरजी रेडियो रंजन के आरजी है सब के, और जितने जितने भी लिस्नर आरजी रंजन के सबके सुना होते हैं।
1: जी जी, और गाना प्ले करते नहीं सुनाते हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार।
1: हम बोल रहा हूँ सिवान जिला घर बोधा छपरा नीतीश कुमार पासवान।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सही हूँ मैम, अपना बताइए।
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: नवरात्रि कहिया हो रहा है?
0: नवरात्रि अभी तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे भी। 11 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाला है।
1: हाँ, 11 से 4 होगा। एक गाना सुना।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: जीवतिया माई का जी, आपको सुनाना है, पूरा पूरा टीम को सुनाना है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: वेलकम,
0: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो मैडम, नमस्कार।
11: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 में।
10: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
11: जी जी, कैसे?
10: हाँ हाँ ठीक है। गाना सुना है मैडम?
11: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
10: और रफी साहब का गाया हुआ है, कोई फूल ना खिलता तो कली भी ना होती।
11: जी जी,
10: ये गाना है रफी साहब का, ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
11: जी
10: हाँ, और ये गाना डेलिकेट रहेगा महावीर जी के नाम पे।
11: जी जी,
10: बहुत आप कॉल अटेंड की है जी मैडम आज।
11: नहीं, हम तो आज शुरू किए हैं थोड़ा लेट से।
10: कितना हुआ सर? 11:18 हम ट्रायल एक बार किए थे, तो आप बिजी बता रहे।
11: मतलब लेट से शुरू किए हैं।
10: वही होगा, 5-7 मिनट लेट होगा। तो ट्रायल हो रहा था, फिर बीच में एक मतलब हम करीब 11:40 पे ट्रायल किए तो नहीं हुआ, फिर सोचे कि अब जाकर थोड़ा सा ट्रायल कर दें, देखे कि अब लग गया। तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम, लेकिन बहुत आप कॉल अटेंड कीजिए यार, जितना कि सारे लोग परेशान होंगे कॉल लगा लगा के। तो ठीक है मैडम, तब ये गाना सुनवा दीजिएगा, कोई फूल ना होता कली भी ना होती, तो फिर आपको गया हुआ है।
11: जी जी
10: ठीक है मैडम,
11: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
10: ओके।

0: हेलो
1: रेडियो।
0: हाँ नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल चल बैठे?
1: मेरा ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बैठे हमारे।
1: तब कहाँ होता अभी?
0: तो पहचान लेनी हमके
1: विकास जी।
0: हाँ विकास जी,
1: सब और सब ठीक है ना?
0: और सब ठीक बैठे। खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया। नहीं कहा अभी?
0: नहीं हमने खाना वाना खा ले लो, जा मटरी रोटी वोटी बना ले रही जा, और खतरा रख ले वानी जा। अब छुट्टी रहा ना, गांधी जयंती रहा तो आज 2 अक्टूबर के।
1: गांधी जयंती के
0: और बताई उन्हें बाढ़ के का समस्या बाटे गोपालगंज में?
1: बाढ़ से तो शहर काफी ज्यादा बावे, हर जगह से पानी पूरा बढ़ जाता।
0: और कॉल आज एक बार में लाग गया, ज्यादा कोशिश ना करे के पड़ा।
1: कॉल ओभरों से जाता, देखी 12:46 होता।
0: तो आज गाना कौन सा सुनवाए?
1: बता दी कौन सा गाना सुने?
0: अपने पसंद से कोनो भी बजा दे गाना।
1: अच्छा भोजपुरी में सुने कि हिंदी में?
0: नहीं भोजपुरी में सुना, हम लोग बिहारी हैं, सुनो हिंदी सुने।
1: भोजपुरी में भी ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा ना होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना
0: है। गाना भोजपुरी मैंने बराबर भोजपुरी नान उतना भी सुने ला, हिंदी सुने ला, जान दे बजा दे कोनो भी बजा दे मैंने बढ़िया एकदम सेट सॉन्ग बजा दे।
1: रवि बता दे।
0: हम ही बता दे। मिलेगा तो हम बता देंगे, यही वाली बात है मैडम।
1: हिंदी में ना है?
0: हाँ हिंदी में बढ़िया है।
1: हाँ, हाँ।
0: दिल के सुकून करे वाला
1: गाना है
0: भोजपुरी, हमेशा काम भी सुनबे कर ला। ऐसा
1: गाना के सुनबो करे
0: सबसे पहले रौदे के सुनवाए। हमारे एक दिन सतवान भाई हुआ ना उपी से गोरखपुर के, और जितना रेडियो रूम सुनने वाला हूँ सबसे
1: गाना
0: प्ले
1: करते हैं।
0: ठीक बच्चे, सॉरी
1: रेडियो रूम
0: गोरखपुर। ओके प्रणाम
1: प्रणाम।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
11: जी जी, कैसे हैं आप?
10: बढ़िया है मैडम जी, आप कैसे हैं?
11: जी
10: जी जी बोलिए।
11: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
10: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
11: और गाने की बोल?
10: गाने के बोले कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी।
11: बिल्कुल। और ये गाना आप किसी को सुनवाएंगे भी?
10: जी जी, मैम को, रजनी मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जीतेन धाकड़ती है, और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिछिया से। इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट रहेगा सुनील चाऊ जी की ओर से।
11: जी बिल्कुल। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमचंद 90.4 FM।
10: धन्यवाद मैडम जी।
11: वेलकम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: हेलो
1: हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
2: जी जी, मैं उज्जैन जिले के बंडागर तहसील से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण गहलोत।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया जी मैम।
1: क्या करते हैं?
2: और हमारे दोस्त जी सुनील जी साहू जी भी है मधुसूदनगढ़ से।
1: जी
2: हाँ,
1: वैसे आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ मकान मालिक बनाने का। मकान बनाता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
2: जी हाँ,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी हाँ मैम, गाना सुनाइए। वो राजा हिंदुस्तानी गाना सुना दीजिए मैम, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: जी, सभी वीडियो सुनने वाले को और हमारे मधुसूदन वाले जी साहू जी को।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं
2: जी मैम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
7: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 9.4 एफएम में।
13: नमस्कार मैडम
14: जी। नमस्कार।
13: और क्या हालचाल हो रहा है तुम्हारे यहाँ?
14: हेलो,
13: क्या हालचाल चल रहा है मैडम आपके यहाँ?
14: जी हम लोग का तो हालचाल ठीक है और मौसम भी हल्का सा गर्म है, ज्यादा नहीं फिर भी ठीक है।
13: हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म है मैडम।
14: अच्छा, नहीं तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैनेज हो जा रहा है।
13: अच्छा, हमारे यहाँ तो सोयाबीन की कटाई चल रही है तो घाम लग रहा है मैडम।
14: हाँ, तो बाहर इस समय निकलने पे थोड़ा बहुत तो धूप लग ही रहा है।
13: आ जाइए हमारे यहाँ भुट्टा खाने मैडम।
14: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है खाने में,
13: है ना?
14: हाँ,
13: हमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये कह रहा था मुझे गाना सुनवा दीजिए मैडम।
14: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
13: मुझे वो सुनवा दीजिए, जेट की दुपहरी में पाँव जले सैया।
14: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
13: गाना सुनवाना है सुनील साहू जी को।
14: बिल्कुल,
13: सुगनगढ़ वाले।
14: जी जी
13: ठीक है। कब चलेगा ये?
14: ये आपको चलेगा कल शाम को 5 से 7 के बीच।
13: अच्छा
14: जी, बिल्कुल। आप अपना नाम बता देते तो अच्छा होता।
13: नाम गोलू साहू मकसूदनगढ़।
14: जी जी बिल्कुल,
13: आपको इंतजार रहेगा मैडम।
14: बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल आपको सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में सुनने को मिल जाएगा।
13: 5 से 7 के बीच में।
14: जी जी
13: मैडम, धन्यवाद आपका।
14: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
13: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम से 90.4।
1: माइको जी स्वागत है कॉल उठाने के लिए। तो
0: जी
1: भाती जी क्या हाल चल रहा?
0: हमारा हाल चल रहा ठीक, बराबर बताए।
1: क्या करे ना, गर्मी में परेशान बनिया पानी से परेशान बन। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी घर परिवार में सब क्यों ठीक बा।
1: और सब बताई?
0: और सब तो बढ़िया बा एकदम।
1: लिसनर लोग खाली आवाज सुन ला परेशान रहे लोग। एक बार गाना बटे जन्नी
0: बताई,
1: गंगा की कसम मैं हूँ बावड़ा, ये क्या कहते हैं जैकी सड़क पर फिल्म लाया गया है, ये गजरा वाली झुमक वाली लहना वाली, मैं हूँ बावड़ा पावला हूँ बावला।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये गाना अपने के मनोरमा जी के तमाम जितना देशों में सब कोई के डेडिकेट बटे जन नहीं। तो गाना सुनावल जा फिर कभी मौका मिली तो बतिया
0: जी। तो गाना रहा प्ले करता नहीं
1: जी। तो सुनाओ के नमस्कार, मनोरमा जी को नमस्कार, सुनने वाला सब दोस्तों के नमस्कार बटे
0: जी। तो रेडियो रूम जी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आई प्रोग्राम इंतजार कर पानी लोग।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-45651 या 97-0970-06-575।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 अमजद पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97665-65750।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत

0: ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमज़ेड पर।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल की फ्रीक्वेंसी।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH-27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478-34468 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
12: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ

0: आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-99-27-9999।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।

हेलो नमस्ते नमस्कार कैसन बानी रवा सबे, उम्मीद करते नहीं रवा सबे ठीक हो गए। हम हैं रवा सबके आरजे दोस्त भारती और रवा सबे सुनते नहीं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और समय हो गई बा रवा सबके मन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के। तो ट्रेन निकल चुकल भी रवा सबे सवार होके के चाहते हैं तो हमार व्हाट्सएप नंबर बा 98 52 78 82 91। जी हाँ 9852788291। और रिकॉल करे खातिर हमारा नंबर बा 72 77 16 65 96। जी हाँ 7277166596। तो बिना देरी कैले कार्यक्रम के शुरुआत कैल जाओ। तो रोवा सब खातिर हमारा तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करता नहीं जब तक हमारा लिसनर लो हमसे जुड़ता नहीं। और गाना की बोल बा सेनूर रंग पवन सिंह की आवाज़ में। तो चलिए गाना प्ले करता नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में सभी के साथ।

तो अभी रवा सभी सुनत रनिया हमरा तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग पवन सिंह और प्रियंका सिंह के सेनूर रंग पिया हो सेनूरा आ गई नी। और एक ही साथ बढ़ल जाइए आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत है नी कि शमसाद अली मुरादा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से लिखत आनी कि कितना हूँ अंग्रेजी सीख लो लेकिन कुत्ता पीछे पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी से काम ना चली भागे के और वहाँ से हट हट के कहे के पड़ी समझी पापा की परी। और लिख रहे हैं कि यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था नहीं कि हमरो गाना सुने के बा और मैसेज करे वाला बानी अरुण चौधरी ग्राम असनी पोस्ट बलिया थाना गुरारू जिला गया बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था नहीं कि मैम जी नमस्कार हम नियों के रवा कार्यक्रम से जुड़ चुकल बानी और एक गीत के फरमाइश कर रहल बानी और यहाँ गीत के बोल पहुँचल बा उमा शंकर सिंह अर्चित सिंह अवंतिका सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि न्याय टेलर शिवरापुर शिवराजपुर से और हमरो गाना सुने के बा भारती जी सुना दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना के फरमाइश के पूरा कल जाए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हमरो गाना सुने के बावे कोनो जिला के जलेबी हो और पवन सिंह के आवाज में सुना दे। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और जी आपके भी गाना के प्ले कल जाए। अरसर लुधियाने से जुड़ल बानी और एक ही साथ है यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हेलो मैं सरफरोज अली गोपालगंज से और हमरो हाजिरी लगा दी और हमहू जुड़ गेल बानी और गाना सुने के चाहत आनी पवन सिंह के और गाना के बोल बा लागेलो हुनरी मुनरी। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ खातिर और गाना के प्ले करतनी और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4।

और यह मैसेज पहुंच गई बा सरफरोज जी की तरफ से, जे की लिखा था नहीं भारती मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके गाना कैसन लागल बताएं जरूर। तो जी गाना तो और काफ़ी बढ़िया बावे, और यही के साथ ही बढ़ल जाए दोपहर न्यूज़ के तरफ, और फिर मुलाकात हुई हमारे दोपहर न्यूज़ के बाद। तब तक ये गाना के एंजॉय करी सभी।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही

0: हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: Thailand drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
4: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
5: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
4: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारू से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहें, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
7: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वहीं यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
8: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी ओर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
10: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

म्यूजिक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुनत तानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर रउआ सब इस शो से जुड़े के चाहत हैं तो हमार व्हाट्सएप नंबर बा 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहत हैं तो नंबर बा 72 77 16 65 96। और रउआ सबके एक और बात बता दी कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के ऐप डाउनलोड करके अपना रेडियो रिमझिम के सारा प्रोग्राम के सुन सकत आनी कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि लिखत आनी कि गुलशन कुमार विशुनपट्टी ब्रह्म स्थान से जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालगंज से और हमरो एगो गाना सुने के बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी हेलो गुड इवनिंग, और हमार नाम साहुल और बरनैया राजा राम से, और हमरो एगो गीत सुने के बाद जी सबके आज गाने के फरमाइश के पूरा कल जाई। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी हमार गानवा कब चली बता दी, इंतजार करत आनी। और मैसेज करे वाला बानी विराइलो जिला बालो छत्तीसगढ़ बसंत कुमार सूर्यवंशी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी जी, आपके भी गाने के फरमाइश के पूरा कल जाइए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत आनी भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष राजा फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ल बानी और लिखत आनी भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ चुकल बानी और हमरो एगो गाना सुना देम। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँच चुकल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत आनी भारती जी नमस्कार, सभी दोस्त के नमस्कार। और मैसेज करे वाला बानी दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी नमस्ते नमस्कार प्रणाम भारती मैम और मनोरमा मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहल्ली पंजाब से, आज हमरो एगो गाना के फरमाइश बा, लिंक भेज देले बानी और डेडिकेट करे के चाहत आनी पूरा दोस्त सबके। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही यहाँ गाना के फरमाइश पहुँच चुकल बा और गाना सुने के चाहत आनी। और मैसेज करे वाला बानी जे कि लिखत आनी नमस्ते मैम, हमार नाम बिटू प्रजापति पिपरा सिवान से जुड़ल बानी और भोजपुरिया एक्सप्रेस में बहुत दिन के बाद जुड़ल बानी और आज हमार गाना बजा दी थोड़ा जल्दी। और गाना के बोल यहाँ पहुँच चुकल बा, गाना बा आवा फरियाले आओ फरियाले यही जीवानी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना बा। तो चली रहा और गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

के सुनत रही है सुन। प्रमोद प्रेमी के नया गाना आ फरियाले यही जिबानी, और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा बिट्टू प्रजापति जी की तरफ से, जे कि लिखत आनी थैंक यू गाना बजावे खातिर। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हेलो दी भजपुरिया एक्सप्रेस में प्रणाम बा, और हम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, प्लीज़ दी गाना बजा दी सुपर सॉन्ग बोल देम और हमरो बजा दी। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँच चुकल बा करिश्मा जी की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सब लिसनर और सब आरजे की भजपुरिया प्रणाम बा, और सब और यहाँ गाने के फरमाइश पहुँचल बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखत आनी कि गाना सुनावे के चाहत आनी अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और लिखत आनी का हाल बा मैम और गाना सुने के बाद सुना देम। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और जी आपके भी गाना के फरमाइश के पूरा कर जाइए। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आनी कि हमारे प्रिय आर जे भारती जी प्रणाम बा, और रउआ इजाजत हुई तो हम भी फरमाइश भेजी जी। मैसेज करे वाला बानी धनीश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एमे इजाजत के कौन बात बा, आज तो सब के गाना के फरमाइश करेला और रवो कर सकता नहीं। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, और हमरो एगो गाना सुने एक बार। और मैसेज करे वाला बानी शाम सुंदर संग्रामपुर से, और लिखत आनी हमहू जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि गाना सुने के चाहत आनी, और लिखत आनी कि भजपुरिया प्रणाम बा भारती जी कैसन बानी, और हम रोहित देहरादून से, और गाना सुने के चाहत आनी। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँच चुकल बा, और लिखत आनी कि एगो रिक्वेस्ट बा कि आज गाना हमारे 5.5 मिनट तक बजाएँ। तो चलिए बिना देरी कैले रहुआ गाना के प्ले करतानी, और गाने के बोल बा किरिमिया गोराए वाला मदन मुरारी व कविता यादव के। तो गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय कर जाओ रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

0: लगे लगली हाँ। ऐसे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोरे हैं, हम सुंदर हैं।
1: अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा।
0: अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करतरा।
1: अरे नहीं हो तोर कसम।
0: और सुना इतनी कमी ना बा, हम बताओ तनी ना कहे के कंजूसी करतरा।
1: बोला बोला
0: सुना
1: बोला।

0: तोहार वजन वैसे ही बढ़ गई बा और मोटाए के कहतड़ू।
1: अरे तो हमरे चली ना जाता, देखो तोरा ना गिर जाता नी।
0: अरे तो उल्टे बतियावत हो, इतना मोटा गई हो कि तोहरा से कैसे चल जाई।

0: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
0: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सभी के भोजपुरी एक्सप्रेस में। और रउआ साहब सुना था नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हम हैं राउर साहब के दोस्त मनोरमा। और बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे और यहाँ पे फरमाइश पहुँचल बा। और यहाँ पे फरमाइश पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं कि हम अरुण चौधरी ग्राम असीन पोस्ट बलिया थाना गुरारू जिला गया बिहार से बानी और हमके भी गाना सुने के बाद और गाना सुने के चाहते नहीं दिलवा ले गई ले राजा जी बोतल में भर के। तो चलिए सब गाना के हम प्ले करता नहीं और इंजॉय

अभी हमने के बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुना था निशान जैक के गाने के बोल वाला दिल वाले गई ले राजा जी बोतल में भर के, और यही के साथ ही बढ़ल जाइए आगे यार। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था नी मनोरमा मैम नमस्ते, का हाल बा मैम? तो हाल तो ठीक बा, अपन बताएं कि रहुआ कैसन बानी। और मैसेज करे अला बानी संजय यादव दुबई से। और इसी के साथ बढ़े और हमने पास मैसेज पहुँच गया बा जो कि लिखा था नी कि हमरो गाना सुने के बाद जे कि गाने के बोल बा कौन जिला के जलेबू हुई ए बबुनी, और फरमाइश करे अलावानी। और मैसेज करे अलावानी अरसाद जी, तो चलिए आपके गाने के हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सा सॉन्ग।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। We'll be right back.

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और रउआ सबके एक बात बता दी कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़ के जान सकतानी और लाइक कमेंट भी कर सकतानी। और एक के साथ बढ़ल जाइए आगे और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आने की और लिखत आने कि उत्तराखंड में भोजपुरिया एक्सप्रेस कब आई और हमारा नंबर कब आई और मैसेज करे वाला बानी उमा शंकर सिंह जी। तो जी रवो बारी आई और जल्द आई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने कि थैंक यू हमार गाना प्ले करे खातिर। और अरशद जी की तरफ से मैसेज पहुँच गई बा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने कि हम सुनील कुमार जिला गोपालगंज से और का हाल बा मैम। तो जी हमार हाल ठीक बा रुआ बताई रुआ कैसन बानी और गाना सुने के चाहत है नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत है नहीं कि भारती जी गाना चला दी दिलीप राम दिल्ली से। तो जी बिल्कुल रो गाना के प्ले करें परे दो गाना के बाद। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत है नहीं कि हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम श्रीनगर से और हमरो गाना सुने के बाद गाना के फरमाइश और यहाँ गाना के फरमाइश हिंदी गाना के फरमाइश पहुँचल बात रोआ के बता दी कि हम हिंदी गाना आज प्ले नहीं ही कर सकत और रोआ अगर भोजपुरी गाना और अच्छा गाना प्ले भेजा जाए तो ज़रूर प्ले हो जाई। और मैसेज करे वाला बानी MD सरफराज और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत नहीं कि जे पहले से मैसेज कैले बा ओकर फरमाइश ना बाजल और जे बाद में कैले बा ओकर बजाओ तेन तो ना जी ऐसन कोनो बात नहीं थे। जे पहले से मैसेज कैले बा ओकरे गाना के फरमाइश प्ले कैल जाता। और एक साथ है यहाँ जे कि गाना के फरमाइश करे वाला बानी और मैसेज करे वाला बानी अंकित राय गोपालगंज से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत आनी प्रियंका सिंह के सिल्की सिल्की सड़िया और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बात। तो चलिए बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले करते नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हमने के सुनत रहनी हसन काफ़ी बेहद खूबसूरत से गाना सिल्की सिल्की सड़िया, और यही के साथ ही बढ़ल जाइए आगे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि भारती मैम रोवा के प्रणाम बाटे, हम राम कुमार पांडे लंदन से आज हमरो फरमाइश बाटे और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि नमस्ते मैम कैसन बानी, और विमल कुमारी जुड़ गल बानी और लिखत आनी कि प्लीज पापा हमार फोन करता नहीं, फोन उठा ली और एगो हमरो गाना के फरमाइश बाब सुना दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी जी, बिल्कुल आपके बात पे ध्यान देता नहीं। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजी के लिखत आनी कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या का खैरियत बाजी, और आज हमरो के एगो गाना सुने के बाद सुनवा दी और हम सुहाना सासा मूसा से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और जी आपके भी गाने के फरमाइश के पूरा कर जाइए। और यही के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी मुन्ना खान कुवैत से जुड़ल बानी घर बंजारी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत आनी कि जल्दी से हमरो गानवा बजा दी, और मैसेज करे वाला बानी करिश्मा जी। तो जी बिल्कुल सबके गाना के फरमाइश के पूरा कर जाता यहाँ एक एक करके, और थोड़ा समय दिलो हमके भी। और एक साथ ही यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बाजे के लिखत यानी कि रेडियो रिमझिम के सभी प्यारे श्रोता और हमार आदरणीय भारती मैम के ढेर सारा प्यार भरल नमस्कार, उम्मीद बा कि आप सब एकदम स्वस्थ मस्त और कुशल मंगल होके। रेडियो रिमझिम की मीठी आवाज़ और भारती मैम के अंदाज हमेशा सबके चेहरा पे प्यारा मुस्कान लेके आवेला, और लिखत है कि हमरो गाना प्ले कर दी। और मैसेज यहाँ गाना के फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँचल बा जे कि गाना के बोल बा जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। तो चलिए बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 91.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सभी के भोजपुरी एक्सप्रेस में। आर हुआ साहब सुनातानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे, यहाँ पे मैसेज पहुँचल बाजू की
5: लिखा तानी की, नमस्ते भारती मैम, गाना सुना एक हाथी और आपके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करे वाला वानी जी की लिखा तानी की,

और यही के साथ बढ़ल जी आ गई और यहाँ पे मैसेज पहुंचल बा जी लिखा नहीं कि हमारा नाम धनंजय कुमार सिंह जिला सिवान महाराजगंज के छोट से गांव पकवलिया टोला से बलुआ से बानी और जी के लिखा था कि ये शायरी मेरे प्यारे दोस्त के लिए और जी के लिखा था कि ये बारिश जरा थम के बरस जब मेरा दोस्त आ जाए तो जम के बरस पहले ना बरस कि वो आ ना सके फिर इतना बरस कि वो जा ना सके और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ल बानी और एक के साथ बढ़ल जी आ गई और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था कि वाओ सुपर सॉन्ग और मैसेज करे वाला बानी उत्तम सोनी जी और यही के साथ बढ़ल जी आ गई और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था कि हमरो गाना बजा दी जल्दी से लिखा था कि मनोरमा दीदी कहाँ बानी तो हम इजी बानी और गाना के भी हम

जितना लोग सुना तानी उन लोग के स्पेशल में गणेश जी के और रानी जी के तरफ से प्रणाम बा। और लिखा तानी कि प्लीज मैम हमारो गाना प्ले कर दी। और गाने के बोल बा कलकतिया राजा, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना बा जो कि पवन सिंह की आवाज में बात। तो चली गाना के प्ले करता नहीं और एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

हमनी के बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनत रहनी सन जे की मैसेज पहुंच गेल बा लिखत आनी की और जी की मैसेज के लिए वाइन लिखा था नहीं कि दिल से थैंक यू बा और लिखा था नहीं कि अपना मम्मी पापा और भैया गणेश भैया के साथ गाना सुनो था नहीं और यही के और लिखा था नहीं कि बिट्टू भैया के साथ भी बैठ के हमने के सुना था नहीं सन गाना तो चलिए बहुत बढ़िया बा और यही के साथ बढ़ल भी आ गए जो कि लिखा था नहीं कि दिल से थैंक यू

और एक के साथ मैसेज पहुंच गई बच्चे के लिखा था ने कि सुपर सॉन्ग चला था बहुत ही अच्छा लगा था। और अगला मैसेज पहुंचल बा जे कि लिखा था ने कि हेलो मैम का हाल बा, हम निशा भारती विलेज उज्जवलिया उसका गांव से प्रखंड और भोजपुरिया एक्सप्रेस में प्रणाम बा सलाम बा और हमरो एगो गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी जी, आपके भी गाना के फरमाइश के पूरा कर जाए। और यही के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि सुपर सॉन्ग बोल देम करिश्मा जी के बहुत अच्छा गाना बा। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आनी और गणेश भैया नमस्ते कैसन बानी आप, बेहद खूबसूरत सॉन्ग बा। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आनी कि हमार गाना तो देर के बाद बाजी और मैसेज शामिल नहीं किए कल। और यहाँ मैसेज करे वाला बानी धर्मेंद्र सानी लिखत आनी समस्तीपुर से जुड़ल बानी और हमरो एगो गाना के फरमाइश बा और हमरो हाजिर लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना के फरमाइश के पूरा कर जाए। और एक के साथ ही मैसेज पहुँच गई बा जी लिखत आनी कि नमस्कार भारती जी, आज हमरो न्यायपारा विरई जिला बालो छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू और हमार भाई मुकेश कुमार साहू। और यहाँ गाने के फरमाइश पहुँचल बा और लिखत इनकी की भोजपुरिया एक्सप्रेस में शामिल हो गई बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एक के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आनी कि नमस्ते नमस्कार प्रणाम भारती मैम और मनोरमा मैम और दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहल्ली पंजाब से जुड़ल बानी और गाना सुने की चाहत आनी और पवन सिंह की आवाज़ में प्यारा सा गाना भिजले बानी और गाना की बोल बा माई। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या

छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार रवा सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रवा शब्द सुना था रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और ये अगर भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़े के चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर बा 98 52 78 82 91। और यदि कॉल करे खाती चाहते हैं तो हमारे नंबर बा 72 77 16 65 96। और रवा सबके एक और बात बता दी कि ये आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहाँ के पोस्टर पे लागल प्रोग्राम के नंबर के नोट कर सकतानी और सारा प्रोग्राम के सुन सकतानी। और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखतानी श्याम सुंदर जी, अरे भारती जी हमार गानवा तो प्ले कर दें तो जी बिल्कुल रवो गाना के प्ले कर जाई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखतानी कि लिखतानी मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहतानी, और यहाँ के तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बावे जे कि गाना के बोल बावे खाली बतिया से पेट नाही भरे। और पवन सिंह खेसारी लाल की आवाज़ में गाना बात, चलिए गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम

अभी हमने के सुनत रहनी हसन पवन सिंह के आवाज खेसारी लाल की आवाज में गाना और गाना की बोल रहा था खाली बतिया से पेट नहीं भरी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया बा जे कि लिखत आने की

बढ़िया मैसेज पहुंच गई बा मनीष रजाक जी की तरफ से, जे की लिखत आनी भारती जी गाना बजावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत आनी की मनोरमा जी रोवो हमार सॉन्ग नहीं बजावत, और 1:30 बजे के मैसेज कैले बानी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी की नाइस सॉन्ग, और लिखत आनी की वो ना आए उनकी याद वफा कर गई, उनसे मिलने की चाह सुकून तबाह कर गई, आहट दरवाजे की हुई तो उठ कर देखा मजाक हमसे हवा कर गई। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ल बानी धनंजय कुमार सिंह जी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी गाना सुने के चाहत आनी, और गाना के फरमाइश करे वाला बानी उमा शंकर सिंह दिल्ली, उमा शंकर सिंह जुड़ल बानी उत्तराखंड से। और लिखत आनी कि दिलीप भाई दिल्ली में गर्मी होता कि ना बताई। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाना के बोल बा गंगा किनारे मोर गांव हो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना के फरमाइश बा। तो चलिए बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सभी के भोजपुरी एक्सप्रेस में। आ रहे आप सुना था नहीं? सब सुनता नहीं रेडियो 91.4 FM।

सुपर सॉन्ग वेरी नाइस लाजवाब भोजपुरिया अंदाज में और एक के साथ भरल जी

तो अभी हमने के सुनत रहनी हसन दिलीप राम जी की तरफ से काफी बेहद खूबसूरत से गाना रितेश पांडे की आवाज में, और गाने की बोल रहा है दिल तिर तीर दिलवा के पार हो गई। और एक साथे बढ़ल जाइए आगे और यहाँ मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत आनी की वाह सुपर सॉन्ग जिसने भी जे भी ये गाना के फरमाइश कैले बा। और यहाँ मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत आनी की दर्द भरा सुपर सॉन्ग, और मैसेज करे वाला बानी निशा भारती। और एक साथे मैसेज पहुंचल बा राघव जी की तरफ से जे की लिखत आनी की भजपुरिया प्रणाम बा मनोरमा मैम और भारती मैम के, और लिखत है कि रउआ दोनों मैम के आवाज में ऐसन मिठास बा जैसन सावन में बरसे वाला फुहार के एहसास बा, रेडियो के महफिल जब रउआ से सजेला हर लिसनर के दिल खुश से खुशी से खिलेला, भोजपुरी अंदाज में बस इतने अरदास बा रउआ दोनों मैम के हमेशा मुस्कान खास बा, दोस्ती प्यार आ अपनापन यूं ही बरकरार रहे, रेडियो रिमझिम के महफिल हर दिन गुलजार रहे, भोजपुरिया प्रणाम बा रउआ सबके और दिल से सलाम बा रउआ सबके। और राघव जी की तरफ से मैसेज पहुंचल बा और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंचल बा ये खातिर, और दिल से धन्यवाद बा और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गल बा जे की लिखत आनी कि हमार गाना कब शामिल करब, और न्यायपारा विरई से प्रमोद कुमार साहू जुड़ल बानी और लिखत आनी कि जिला बाद। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा उमा शंकर जी की तरफ से जे की लिखत है मैम जी आप रुआ हमार गाना पसंद के गाना सुनैनी है, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद बाकी सब लोग के गीत पसंद आयल हो। और उमा शंकर सिंह अवंतिका सिंह अरिजीत सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ल बानी। और यही के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नी, और हमरा प्यार और हमरा प्यारे दोस्त लोग खातिर शायरी, और लिखत है नी कि वो जो हमारे लिए खास होते हैं जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं, चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे उन्हें पर दूर रहकर भी वो दिल के पास होते हैं। और यही के साथ है यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाना सुने के चाहत आनी जे कि मैसेज करे वाला बानी राकेश भारती बक्सर से जुड़ल बानी, और गाना के बोल बावे पिया कब ले अयबा दिल्ली राजधानिया से पवन सिंह की आवाज़ में, ओल्ड गाना सुने के चाहत आनी। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करतनी और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ,
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊँ, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: छोटा सा ब्रेक के बाद रोवा सबके फिर से स्वागत है भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रोवा सब सुना था नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखा था नहीं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, बुलेट गुप्ता, धतीवाना, आउट ऑफ द स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र से जुड़ल वानी, और गाना सुने के चाहते नहीं, बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखा था, नमस्कार भारती जी, हमार नाम सोनू कुमार, छोटका साखे रामदास के रहे वाला बानी और काठमांडू नेपाल में बानी अभी, और लिखा था नहीं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजी की लिखा था नहीं कि धनेश शर्मा, गोपालगंज, गोपाल कोठी, हमरो हाजरी लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी कि अस्सलाम वालेकुम आ गईनी हम हूँ और का हाल बाजी आपके रेडियो रिमझिम टीम के, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाला बानी सानिया सैफी जी, और हमने की तो हाल ठीक बा रहुआ, बताई रहुआ कैसन बानी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी कि हमार भी गाना बजा दी, और मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गल बजे की लिखा था नहीं कि भारती मैडम जी, भोजपुरिया एक्सप्रेस प्रोग्राम में हमरो के शामिल कर ली, और आप काल जीवतिया। और मैसेज करे वाला बानी जे की लिखा था नहीं कि गुरु नानक पुरा बठिंडा पंजाब से जुड़ल बानी किशोर सावलानिया, सावित्री सावलानिया, सुमन सावलानिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी, और एक साथ ही अगला मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी की भारती मैम रउआ के प्रणाम बा। भोजपुरिया एक्सप्रेस शो इतना नीमन लागेला कि मन खुश हो जाला, जेकर धुन बाजत ही मन में एगो गजब उमंग दौड़ जाला। भारती जी ई हमार पसंदीदा गाना आज रउआ भोजपुरिया एक्सप्रेस में बाजी की ना बता दी, और रउआ हाथ में बा, लेकिन रउआ ई प्रोग्राम इतना मजेदार और जानदार होला कि मन एकदम तृप्त हो जाला। पूरा गोपालगंज में रउआ आवाज के जादू चलते रहे, और हमार पसंद के गाना बा मनोज तिवारी की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और मैसेज करे वाला बानी हरे राम शर्मा ग्राम सरफरा पोस्ट बतरदे थाना बरौली जिला गोपालगंज से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यहाँ अगला गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि गाना सुने की चाहते नहीं, और मनोरमा जी गाना के प्ले करें।
0: फरमाइश पहुँच गई बा जो कि लिखा था नहीं कि हम सुनील कुमार जिला गोपालगंज से काहल बा मैम, और लिखा था नहीं कि गाना सुनने के बाद जी के लिंक के माध्यम से भेज दिले बानी। तो चलिए राउ गाना के हम प्ले करते हैं सुनील जी, और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और गाने के बोल बा रेलिया रे, बहुत ही बेहद खूबसूरत सा गीत बा। तो चलिए एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम।

कभी हमने के सुनत रहनी है शिल्पी राज की आवाज में प्यारा से गाना रेलिया रे, और यही के साथ ही बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी की गाना बजावे खातिर थैंक यू मैम, और मैसेज करे वाला बानी सुनील कुमार जी, और यही के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी की लिखत आनी की बार बार ये भजपुरिया एक्सप्रेस में बैठे के कोशिश करता नहीं पर अंतरात्मा बोल रहल बाकी एक्सप्रेस में दोसर ई एक्सप्रेस में दूसरा में ही खुशी बा, और टाइम आते आवत आवत एक्सप्रेस कहीं और पहुंचा दी, और लिखत आनी की बस ये हाल बा।

और मैसेज करे वाला बानी सानिया सैफी जी और एक साथ है यहाँ। मैसेज पहुँच गए उत्तम सोनी जी की तरफ से, जी की लिखा था नहीं वहाँ सुपर सॉन्ग बहुत ही अच्छा गाना चला था। और यह मैसेज पहुँचल बा कि कब से इंतजार करता नहीं।

और एक साथ है यहाँ गाना की फरमाइश को गाना के फरमाइश पहुंचल बा गणेश जी की तरफ से और गाना सुने के चाहत आनी और लिखत आनी कि मैम ये गाना डेडिकेट करे के चाहत आनी सबसे पहले आपके और करिश्मा जी के, मनोरमा जी के, राघव जी के, धनेश जी के, उत्तम भाई के और मनीष भाई के, पिपरा नारायण से और रानी जी के, रेशमा जी के, प्लीज़ मैम हमारा गाना प्ले कर दें और गणेश जी की तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बा जी की गाने के बोल बा तोहरा ला केहू जिए ला। तो चलिए बिना देरी के ले रहा और गाना प्ले करता नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: छोटे से ब्रेक के बाद रोवा सबके फिर से स्वागत बाद भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रोवा सब सुना था रेडियो रमझिम 90.4 FM। और बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे, और यहाँ गणेश जी की तरफ से मैसेज पहुँच गए बजे की लिखा था ने की बहुत अच्छा लागल गाना सुन के, और गाना सुनाए खातिर शुक्रिया। और लिखा तानी कि गाना कैसन बा मनोरमा दी जरूर बताई, और लिखा तानी कि सुपर सॉन्ग बोल दे मनोरमा जी गाना वाला, मनोरमा जी गाना रहला मनोरमा जी खाती। और ये जी मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखा तानी कि गाना पूरा ना बजेनी हाँ, तो जी गाना 3-3.5 या 4 मिनट के बजाओ तेन, ताकि सब केहू के गाना के फरमाइश के पूरा कर जा सको। और ये मैसेज पहुँचल बही हाँ जे कि लिखत आने कि अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से जुड़ल बानी, और गाना सुने के चाहत है नी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत आने कि हेलो मैम मनोरमा जी नमस्ते कैसन बानी, और वाओ सुपर सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गए बा जे कि लिखत आने कि गाना सुने के चाहत है नी, और मैसेज करे वाला बानी जे कि लिखत है नी कि नमस्ते मैम हम सिमरन फ्रॉम गोपालगंज से जुड़ गई बानी, और हमके भी गाना सुने के बावे और नीलकमल की आवाज़ में गाना सुने के चाहत है नी, और गाने के बोल बा माल निकल गई जाली। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करते नहीं सिमरन जी, और सुनत रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: धरती फाटो।
1: अभी हमने के सिमरन जी की तरफ से गाना सुनत रनिया से नीलकमल जी की आवाज़ में माल निकल गई जाली और एक ही साथे बढ़ल जाइए आगे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आने उत्तम सोनी जी की वाओ सुपर सॉन्ग जाली और यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि

0: पढ़ लिखा था नहीं कि हमरो पे ध्यान दी और काफ़ी प्यारा डांस सॉन्ग बाजत आवे और यहाँ मैसेज पहुँच गए बा, लेकिन लिखा था नहीं कि हमार मैसेज कब दिखाई दी और हमरो टिकट कन्फर्म कर दी। विक्रम सासाराम, विक्रम मैम से सासाराम जाता नहीं, नौसाद मोबाइल विक्रमगंज और भी और विक्रमगंज में भोजपुरिया एक्सप्रेस के शुभ मुहूर्त गाना बजा दी और नौसाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत आनी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल पा जी की लिखत आनी सानिया सैफी जी की कोई से चुप बानी और सुनत आनी। तो जी बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप सुनत रहें और थोड़ा हंसी वाला कम मैसेज भेज जी कहें कि बहुत जोर से हंसी आ जाता और लिखत आनी कि सुपर सॉन्ग भारती मैम और मैम हमार गाना बाज गिल का तो जी नार और गाना निखे बाजल और मैसेज करे वाला बानी रेशमा जी। और एक साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा दिनेश जी के तरफ से जेके लिखा था नहीं कि धीरे धीरे सब दूर होते गए वक्त ने आगे वक्त के आगे मजबूर होते गए रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई कि बस हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ है जुड़ल वानी और लिखा था नहीं कि
1: और जी के लिखा था नहीं कि हमारे प्रिय रानी मुखर्जी भोजपुरिया यानी मनोरमा जी एक्सप्रेस में राउर स्वागत बा जी। तो राउर भी बाटे वैसे हमारा नाम रुगलो रख दिले बानी लोग की कहीं बताई हम
0: और यहाँ की तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बावे और गाना सुने की चाहत आनी और गाना के बोल बावे इतना बदल गईलू और बिना देरी के लिए रहुआ गाने के प्ले करे और इन्जॉय कर लीजिए रेडियो रिमझिम।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
5: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सभी के भोजपुरी एक्सप्रेस में। आ रहा हुआ सब सुनत आनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। हाँ, मैं ही राव दोस्त मनोरमा और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे। यार एक मैसेज पहुँचल बा,
6: और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैसे लिखत है भोजपुरिया प्रणाम दोनों सिस्टर जी लोग के, और हम संतरा कुशवाहा

जेके लिखत हैं कि हम संत कुशवाहा हीरा पाकर से और कैसन बानी सिस्टर जी, तो हम तो ठीक बानी, रुआ बताई रुआ कैसन बानी और यहाँ के तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना के प्ले कर जाइए और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेके लिखत आने की मैसेज करे वाला बानी सोनू कुमार यादव और लिखत आने की हमरो एगो गाना प्ले कर दी। तो जी बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत बा और आपके भी गाना प्ले कर जाइए और यहीं के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने की लागत है कि हमार नंबर ना आई और आज मनोरमा मैम जी। तो जी बिल्कुल राउर नंबर भी आई और मैसेज करे वाला बानी जाए कि सोर जी और यही के साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने की हमरो गाना बजा दी और यहाँ मैसेज पहुँच गए बा जे कि मैसेज करे वाला बानी धनेश कुमार मिश्रा जी और लिखत है कि अभी अभी गाना बाजा था हमार कि थोड़ा पीछे चला था जी राउर गाना तो अभी प्ले भई रहा है और वह सुननी है ना का और रुआ खाती मनोरमा जी कमेंट भी कैले रही है लेकिन रुआ ना सुननी है कोनो बात नहीं है और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत आनी हम गाना सुने के चाहत आनी और जय किशोर जी की तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बावे और गाना के बोल बावे गुलरी के फूल फुलवा बलम। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तभी हमने के सुना त्रिनिया संजय किशोर जी की तरफ से काफी बेहद खूबसूरत से गाना गुलरी के फूल बलम, और एक ही साथे बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ मैसेज पहुंचल बा धनेश जी की तरफ से, जे की लिखत है नहीं कि स्पेशल सॉन्ग रहल है भारती जी खातिर, और तो जरूर बताई हम का कर दिले वानी। और यहाँ मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत है नहीं कि हमहू बानी और हमरो गाना प्ले कर दें, और मैसेज करे वाला बानी बुलेट गुप्ता। और एक साथ यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखत आनी कि गाना सुने के बावे और मनोरमा जी शामिल करें।
1: और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बाजे की लिखत आनी कि नैन टेलर शिवराजपुर से मुझे भी हमके भी गाना सुने के बाद, तो चलिए और गाना के हम प्ले कर दानी। और गाने का बोल बा शादी हुई बर्बादी हुई, तो चलिए प्ले करते हैं और गाना के और इन्जॉय करिए।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोगा सबके भजपुरिया एक्सप्रेस में, और रोगा सब सुना तानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजी की लिखत आनी की जिंदगी में दो बात हमेशा याद रखना, एक कल बताऊंगा और एक परसों बताऊंगा, ज़्यादा पूछो तो ये भी नहीं बताऊंगा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बार रोहित जी की तरफ से, और बिल्कुल चली नहीं पूछा त्रुआ से नत बताई, और मैसेज पहुँच गए भाई यहाँ जी की लिखा था नहीं कि नेक्स्ट सॉन्ग हमार बजा दी। और सोनू कुमार यादव जी की तरफ से मैसेज पहुँचल बा, और गाना के बोल बा तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। त्रुआ के बता दी कि भोजपुरिया एक्सप्रेस है, मैं खाली भोजपुरी गाना बाजेला, हिंदी गाना नहीं बजा सकत। और पवन सिंह के गाना तो है, लेकिन पवन सिंह के आवाज़ में गाना बा, लेकिन भोजपुरी में नहीं है, हिंदी में बा, वैसे हम नहीं बजा सकत। ही हम अगला मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी कि बर्बादी हुई तो क्या हुआ, किस्मत अभी बाकी है, जो छूट गया वो कल था, आज भी उम्मीद बाकी है, टूटे हुए ख्वाबों को फिर से सजाएंगे, जो हमें गिराते रहे उन्हें मुस्कुरा कर दिखाएंगे, जिंदगी ने जितना भी दर्द दिया हो हमें, हर दर्द को गीत बनाकर गुनगुनाएंगे। अगर चाहे तो मैं बर्बादी हुई इस लाइन पर भोजपुरी अंदाज में भी एकदम रेडियो पर सुनाने लायक शायरी बना दूं। तो जी बिल्कुल राघव जी बना सकते हैं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँचल बा रुआ तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी की लिखा था नहीं कि थैंक्स मैम हमार गाना बजावे खाती, और पूरा बजाती तो और ही अच्छा लागी, तो पर थैंक्स बड़ा वाला थैंक्स, और मनोरमा जी के भी थैंक्स। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बाकी बहुत बहुत धन्यवाद रोगा के गाना सुनावे खाती। तो और जी रवा के बता रही, हम तो राउर गाना प्ले कहीं भी ना कहीं नहीं हाँ, और धन्यवाद कौन बात के देता नहीं। और यही के साथ ही यह मैसेज पहुंचल बाजी की लिखत आने की हमरो टिकट कंफर्म कर दी, यहाँ गाना के बोल पहुँच गए बा और गाना सुने के चाहत आनी। और मैसेज करे वाला बानी विक्रम गंज से, नौसाद मोबाइल विक्रमगंज से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत आनी खेसारी लाल के, और गाना के बोल बा सॉरी सॉरी सोना। तो चलिए बिना देरी के लिए रवा गाना का प्ले कर जाऊँ और एंजॉय कर जाऊँ रेडियो रमजन 90.4।

0: 사람처럼 I love you.
1: 가능한
2: तभी हमने के सुना रही हसन सॉरी सॉरी सोना के साहिर लाल के गाना और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जी की लिखत आनी नौसाद जी की थैंक्स मैम गाना बजावे खातिर और लिखत आनी बाय बाय और लिखत आनी कि सब लोग के हमरा पास मैसेज आ गई बा और सब केहू हमरा रुआ के बाय बाय बोला था और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जी की लिखत आनी कि हमरो गाना सुना दी और मैसेज करे वाला बानी संतरा कुशवाहा जी और ठीक साथ है अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी मैम तनी हमनियों के ताकि तिरछी नज़र से हमनियों के सॉन्ग बजा दी और मैसेज करे वाला बानी राघव जी और यहाँ की तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाना के बोल बा जाए चंदा ले आवा खबरिया। तो चलिए बिना देरी के लिए रुका गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।

छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोवा सबके भजपुरिया एक्सप्रेस में और रोवा सुना तानी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजी की लिखा तानी संजय यादव जी की नाइस सॉन्ग राघव जी के और यहाँ मैसेज पहुँच गई बार राघव जी की तरफ से जी की लिखा तानी की चांदनी में जब उनका नाम याद आता है दिल को एक मीठा सा सुकून मिल जाता है। दूर है तो क्या एहसास तो पास है, उनकी मुस्कान ही तो दिल की सबसे प्यारी आस है। और लिख रहे हैं थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करे खाती और दिल से थैंक यू आप दोनों मैम के। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखा था यानी कि बहुत बहुत अच्छा गाना बावे और लिख रहे हैं लिखा तानी कि मैडम जी हमारा पसंद के गाना बा और मैसेज करे वाला बानी हरे राम शर्मा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बाजी की लिखा तानी कि लगा था कि राघव जी मैडम जी से नाराज बानी वही से गाना सुना तानी और मैसेज करे वाला बानी संतरा जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल वाले जी की लिखा तानी कि सुपर सॉन्ग और गुनगुनैनी है तो बहुत अच्छा लागल है। और मैसेज करे वाला बानी गणेश जी और एक ही साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखत है उत्तम सोनी जी की वाओ सुपर आपके रोवा गुनगुनाया इन है तो अच्छा लागल हा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखत है कि हमके भी गाना सुने एक बार। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा निशा भारती जुड़ल बानी ओझवलिया उसका गांव प्रखंड से तो चलिए बिना देरी के लिए रो गाना के प्ले कर जाओ और गाना के बोल बा दिलवा के चोर और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना बात है चलिए गाना प्ले करते नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तभी हमने के गाना सुना त्रिनिया से निशा भारती जी की तरफ से, और गाना के बोल रहल है दिलवा के चोर लागेल। और यही के साथ बढ़ल जाइए आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा निशा भारती जी की तरफ से, जे की लिखत आनी थैंक यू सो मच गाना प्ले करे खातिर। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे की लिखत

और यहाँ मैसेज पहुँच गए गणेश जी की तरफ से, जेक लिखा था बाय बाय भारती दी, बाय बाय मनोरमा दी जी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था कि और यहाँ टाइम ख़त्म हो चुकल बा और लिखा था हमार गाना ना बाजी। और जी बिल्कुल, जेकर गाना नहीं प्ले कल गई उनकर गाना के फरमाइश के फिर से प्ले कल जाई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था हाय इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से जुड़ल बानी। और यहाँ के भी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गए बा। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था रोवा सबके धन्यवाद जो रोवा सब हमरा मैसेज के प्रोग्राम में शामिल कैनी। और शुभ विदा फिर अगला संडे के मिलल जाई, बाय बाय। और मैसेज करे वाला बानी हरे राम शर्मा जी। और यहाँ राघव जी की तरफ से भी बाय बाय मैसेज पहुँच गए बा। और लिखते हैं बहुत बहुत बधाई हो मैम आप दोनों आदमी के। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा तानी कि हमके भी गाना सुने के बावे। और यहाँ मैसेज पहुँच गए बा करिश्मा जी की तरफ से जी की लिखा तानी बाय बाय भारती दीदी। और यहाँ जो अगला गाना के फरमाइश आयल बा प्ले करते हुए आप सबसे लेम विदा। और जेकर गाना के प्ले नहीं कैले उनका गाना के फिर प्ले कैल जाए और नाराज ना हो हम लोग का काफ़ी बहुत कम टाइम मिलेगा और सबके गाना के प्ले करके रहेला। और जेकर गाना के प्ले नहीं गई ले फिर काल प्ले कैल जाए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है कि हमरो गाना सुने के बाद तो श्रोता लोग समय हो गल बा शो के समाप्त करे के। तो अगर इस रवा सब एक कार्यक्रम से जुड़े के चाहत है तो व्हाट्सएप नंबर 9852788291 और कॉल करे खातिर नंबर 72776696। तो अगला फरमाइश के प्ले करते हुए शो के समाप्त कर जाइए। और कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत यानी खेसारी लाल के आवाज़ में साड़ी खोसत खोसत कमर में धागी भइल बा। और एक गाना के प्ले करते हुए लेता नहीं आप सबसे विदा, बाय बाय। आप सब सुनत

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 पर। जी हाँ, 8029294921 पर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब, और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम की तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता न लें और इंटरनेट में जवाब सर्च न करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम का रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को, और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम।
9: नमस्कार।
10: नमस्कार, नाम बता दीजिएगा अपना।
9: अरविंद कुमार।
10: और कहाँ से हैं आप अरविंद जी?
9: चक्की होगा सर, उसका प्रखंड में पड़ता है
10: जी। क्या करते हैं आप?
9: पढ़ाई छोड़े हैं, 12 से पढ़ाई की है।
10: अच्छा,
9: काम करते हैं
10: जी। आगे क्या करना है?
9: अब देखते हैं, पढ़ना ही है।
10: चलिए, तब तो ठीक ही है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
9: जी, बहुत बार किया है।
10: आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
9: मम्मी जी का नाम है चिंता देवी और पिताजी का नाम है।
10: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेलने के लिए?
9: जी।
10: तो अरविंद जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है
9: जी।

रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी।

0: जनगण मन ऑप्शन बी, वंदे मातरम ऑप्शन सी, विजयी विश्व तिरंगा।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए? तो अरविंद जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह फरवरी का है।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी लॉक कीजिए।
0: तो अरविंद जी आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 12 फरवरी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन बी 13 फरवरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम। जी रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं कमरान रफीक बोल रहा हूँ।
0: और कहाँ से हैं आप?
2: जस्ट सिवान बकरे सुल्तान। कमरानी नाम है।
0: जी जी
2: रफीक मिला दीजिए।
0: हाँ।
2: मैं तो बहुत पुराना लिस्टर हूँ, आप से नहीं है।
0: जी जी
2: सोनी जी होती तो पहचान लेती।
0: हाँ हाँ
2: मैं बहुत, मैं तो 2009 से सुनता हूँ जब से स्थापना हुई है।
0: वैसे क्या करते हैं आप?
2: ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं आया हूँ फिलहाल दिल्ली में।
0: जी जी
2: मैं तैयारी करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, कंप्यूटर सीखूंगा, यही सब करूँगा और क्या करूँगा।
0: तो तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए? कमरान जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है की

0: बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार।
1: सवाल का सवाल हम समझे नहीं।
0: सवाल है आपसे कि बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है।
1: अच्छा।
0: आपका समय शुरू होता है अब।
1: तो इसमें डाल दीजिए पटना को डालिए।
0: जी
1: पटना को डाल दीजिए।
0: प्योर है
1: जो तो लिखा है राजनीति के बारे में उतना जानते हैं पहले।
0: अच्छा जी लॉक करते हैं तब।
1: हाँ करिए पटना लॉक।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पटना बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए। तो आपसे दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी।
0: श्योर है।
1: लॉक
0: करते हैं तब। तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए। तो आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी मैरी कॉम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी खरीदे।
0: प्योर है।
1: ऑप्शन सी।
0: प्योर है आप।
1: प्योर तो नहीं है।
0: लॉक किया जाए।
1: हाँ ऑप्शन सी खरीदे।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दी कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मैरी कॉम गलत जवाब।

0: जवाब है, सही जवाब है कि ऑप्शन बी किरण बेदी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80-29-94-921 पर। जी हाँ, 80-29-94-921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
8: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
8: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
8: जी, नीतू बोल रहे हैं।
0: नीतू।
8: हाँ।

0: और कहाँ से हैं नीतू जी आप?
1: पिपराई से।
0: कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ, टेंथ पढ़ाई।
0: अच्छा, क्या करती हैं वैसे अभी?
1: वैसे ही अभी घर के बस ही लोगों को पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा जी,
1: काम भी करती हूँ।
0: तो आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहले कभी कॉल किया है?
1: हाँ किए।
0: अच्छा, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
1: जी तैयार।
0: तो नीतू जी आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी महर्षि वशिष्ठ होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो नीतू जी मैं आपको बता दूं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिए।
2: हाँ हेलो, नमस्ते मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी।
0: नाम क्या है आपका?
2: सुधा कुमारी।
0: सुधा?
2: जी मैम।
0: और कहाँ से हैं आप सुधा जी?
2: बता दे।
0: आपके आसपास कोई है?
2: नहीं मैम, मैं अकेली हूँ।
0: ऐसा तो लग रहा है मुझे कि कोई है।
2: नहीं नहीं,
0: अगर कोई होगा तो मैं फोन काट दूंगी।
2: नहीं मैम, अकेले हूँ। बोलिए,
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ पास की हूँ, 11th में हूँ।
0: अच्छा जी, तो आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी कुछ सोचे नहीं है।
0: चलिए फिर, तब तो ठीक ही है। इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
2: जी मैम।
0: और वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: सीता का नाम, माता का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी, पिता का नाम है श्री सुमन माता।
0: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? सुधा जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी अपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एको।
0: हेलो।
1: हाँ,
0: जोर है?
1: नहीं, कंफर्म तो नहीं।
0: तो मैं सुधा जी बता दूं आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अपनी चौधरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो गेम कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। हाँ जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
2: मेरा नाम सालू कुमारी है।
0: सालू कुमारी?
2: यस मैम।
0: और कहाँ से हैं सालू जी?
2: से बिद्रोला से।
0: क्या करती हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में है अभी?
2: नाइन्थ।
0: आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: यूपीएससी में जाना है।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो अच्छी बात है। और तो इससे पहले आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कभी कॉल किया है?
2: मैंने एक बार 10 प्रश्नों का पूरा सही सही उत्तर भी दिया था।
0: अच्छा, ये बात चलिए ठीक है। और वैसे आपकी मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: हाँ, मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम वीरेंद्र कुमार प्रसाद।
0: तो तैयार है आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए?
2: यस मैम।
0: तो चालू जी, आपके आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी,

0: ऑप्शन सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम तो ऑप्शन सी कीजिए 13 फरवरी।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो कालू जी मैं आपको बता दूं, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: हिंदी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिंदी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923। दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
8: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 8029-94921 पर। जी हाँ, 8029-94921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
9: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: जी मैडम
0: जी, नाम बता दीजिएगा।
9: रंजीत कुमार
0: जी। रंजीत जी, कहाँ से हैं आप?
9: परिपटना वाला।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
9: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में हैं अभी?
9: अभी तो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं।
0: अच्छा जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आज पहली बार कॉल किए हैं?
9: पहले एक दो बार विनर भी बन गए हैं।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
9: मेरे पिता का नाम श्री जग महतो और मेरी माता का नाम श्रीमती इंदु देवी।
0: जी तो तैयार है इसको को खेलने के लिए?
9: जी मैडम।
0: ओके तो रंजीत जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
1: ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: और आपको बता दें कि आप पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधि वृक्ष बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: तो आपका आपसे दूसरा प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिता जी का क्या नाम है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी सपनी चौधरी।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो आपको बता दूं आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सपनी चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, तो आपका आपसे तीसरा प्रश्न है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ध्रुव पर।
0: क्योर है?
1: हाँ क्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ध्रुव पर गलत।

0: जवाब है, और सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में।
1: ठीक है मैडम,
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेल्प क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते सोनी मैम।
0: नमस्ते, मेरा नाम सोनी नहीं है, मैं भारती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम पल्लवी है।
0: और कहाँ से हैं आप पल्लवी जी?
2: मैं भेड़िया से हूँ।
0: और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ में पढ़ती हूँ मैं।
0: अच्छा जी, तो आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: अभी सोचते नहीं है।
0: अच्छा, अभी सोच रही है, चलिए कोई नहीं। तो इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है, तैयार है आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? तो पल्लवी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष। समय शुरू होता है आपका अब।
1: बोधि वृक्ष, ऑप्शन सी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधि वृक्ष बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: दस फरवरी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 10 फरवरी बिल्कुल गलत है। सही जवाब है 13 फरवरी। कोई नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कंटेस्ट में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो,
0: रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी प्रणाम मैम।
0: प्रणाम।
2: गोलू कुमार।
0: और कहाँ से हैं आप? गोलू जी
2: मरिया।
0: तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: 9।
0: तो आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र यादव, माता जी का नाम श्रीमती माला देवी।
0: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
2: जी मैम।
0: तो गोलू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए।
0: क्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में।
1: उत्तर दिशा में।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा में बिल्कुल सही जवाब है। तो गोलू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं उर्दू।
0: श्योर है?
1: श्योर का नाम है तरीकी तुलाजी।
0: ओके। तो गुरु जी, मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उर्दू बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू।
0: तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है कि नेताजी के उपनाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी, मैं आपको बता दूं कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। बता रहे हैं पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं स्वामी दयानंद।
0: श्योर है?
1: श्योर का नाम परीक्षित कुलवासी।
0: तो गुलू जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। अब तो गोलू जी, आपका प्रश्न आपसे ये है कि लिखावट का ना बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी को लॉक कीजिए।
0: ऑप्शन
1: सी।
0: सी?
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: नो मैम, परीक्षा को कीजिए।
0: तो गोलू जी, मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी।
1: जी मैम।
0: कोई बात नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97,14,86,165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90,066,7,231।
2: कॉल कीजिए 90,066,7,231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 8009294921 पर। जी हाँ, 8009294921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
7: सोनू दुबे बात कर रहा हूँ, 35।
0: जी एक बार और नाम बता दीजिएगा।
7: सोनू दुबे, 35 से।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
7: ग्रेजुएशन लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: तो आगे क्या करना है आपको?
7: इन सर्विसेज की तैयारी करनी है।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो और बढ़िया है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
7: जी जी।
0: वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
7: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का संतोष देवी।
0: जी जी, तो आप तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए?
7: जी जी।
0: तो सोनू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: ऑप्शन सी महात्मा गांधी।
0: क्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं सोनू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गंगा को ठीक कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा प्रश्न आपसे है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? ऑप्शन ए छठवें, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी आठवें। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सातवें फिर कीजिए।
0: क्योर है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सातवें बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी।
1: अवधी भाषा में लिखा है।
0: तो आपको मैं बता दूं सोनू जी कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अवधी बिल्कुल सही जवाब है। तो पांचवे प्रश्न की तरफ चला जाए।
1: जी।
0: तो आपका पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि दो हजार चौबीस में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? 2024 में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? ऑप्शन ए सातवीं, ऑप्शन बी आठवीं और ऑप्शन सी नौवीं बार। श्योर है?
1: नहीं,
0: तो चलिए सुनू जी, मैं आपके पांचवे प्रश्न के ऑप्शन सी नौवीं लॉक करती हूँ। तो आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपसे आपका छठवां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी।
1: ऑप्शन सी को किस कीजिए। सपनी चौधरी।
0: सपनी चौधरी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सपनी चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद।
1: ऑप्शन सी पिछली है।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, क्यों नहीं।
0: तो लॉक करें?
1: जी।
0: तो मैं बता दूं सुनू जी आपको कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जहानाबाद बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए गया।
1: ठीक है,
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई की।
2: हेलो जी, रेडियो रिमझिम कम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते
2: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
3: आशिका खातून।
2: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। आशिका खातून, किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
3: 10th में।
2: अच्छा जी, और क्या बनना चाहती हैं आप?
3: जी तो पढ़ाई करेंगे।
2: अच्छा, वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
3: पापा का नाम डॉक्टर अली, मम्मी का नाम रबिया खातून।
2: तो आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है पहले?
3: ना, पहली बार।
2: अच्छा जी, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
3: बिल्कुल।
2: तो आपसे आपका पहला प्रश्न है,

0: विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए लॉक किया जाए? तो चलिए अंशिका जी, आपके ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आप, मैं बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए? तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी लॉक किया जाए? तो अंशिका जी, आपको बता दूं, आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856-587।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 8029-94921 पर। जी हाँ, 8029-94921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
15: हेलो, नमस्ते मैम।
16: हेलो,
15: नमस्ते मैम।
16: रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
15: रवि सिंह बात कर रहा हूँ, पचरुखी से।
16: रवि
15: जी, रवि सिंह।
16: और किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
15: 12वीं में मैम।
16: तो आगे क्या करने का सोचे हैं?
15: तैयारी अभी सोचे नहीं है, तैयारी करेंगे 12वीं पास के बाद।
16: अच्छा, तो इसके पहले आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
15: जी जी, इससे पहले भी किया।
16: वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
15: मम्मी का नाम सुशीला देवी और पिताजी का नाम दिनेश सिंह।
16: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
15: जी।
16: तो रवि जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: कोसी प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? कोसी प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी सहरसा।
1: ऑप्शन सहरसा फिक्स कीजिए मैम।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो रवि जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सहरसा बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: रवि जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद।
1: ऑप्शन ए गया।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: जी जी।
0: तो मैं रवि जी आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो रवि जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है कि लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए मैम।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं
0: है। लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो रवि जी, मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय बिल्कुल गलत है। सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी।
1: ठीक
0: है। हेलो क्यूट कॉन्टेस्ट में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रेंज कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप?
2: शिवम कुमार, मीरगंज से बोल रहे हैं।
0: जी एक बार और बता दीजिएगा।
2: शिवम कुमार, मीरगंज से बोल रहे हैं।
0: क्या करते हैं आप शिवम जी?
2: अभी तो बैठे हैं घर पे, तैयारी करते थे, अभी ग्रेजुएशन।
0: किस क्लास तक पढ़े हैं आप?
2: ग्रेजुएशन हमारा फाइनल हो गया है।
0: अच्छा, तो कंपटीशन की तैयारी चल रही है?
2: अभी तो रुका हुआ है, अभी करते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक है।
0: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में पहले कभी कॉल किया है?
2: पिछले दो रविवार से कर रहे हैं
0: जी।
2: इससे पहले करते थे, बीच में 6-7 महीने नहीं किए हैं।
0: वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: मम्मी का नाम है मनोरमा देवी, पापा का नाम है मनोज सिंह।
0: जी, तो तैयार हैं आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट खेलने के लिए?
2: जी।
0: तो शिवम जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि
2: जी,

0: हड्डी का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी लौह आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: जी, कैल्शियम का जो प्रमाण में कमजोर रहता है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो सीएम जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कैल्शियम बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी हाँ।
0: आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
1: स्वामी दयानंद सरस्वती।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी जी।
0: तो शिवम जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी हाँ।
0: तो आपका तीसरा प्रश्न है आपसे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी।
1: जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री होगा।
0: ओके, लॉक किया जाए? श्योर है?
1: पूरा नहीं है, 100% नहीं है, फिर भी लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है, इसी को कहिए।
0: ओके, तो बता दो कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री गलत है और सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी।
1: जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये जो विज्ञान शब्द है ना, हमको लगा कि वाजपेयी होगा, फिर भी हम
0: चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करते हैं। इस कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029494921 पर। जी हाँ, 8029494921 पर, और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत, और रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए

0: मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज, S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
0: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
9: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886978।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
8: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
7: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
8: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
7: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
8: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
7: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।

0: बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-7-14-86-165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी ले।
8: इधर वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर आज सारण जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 4,932 पैकेट सूखा राशन विशेष वाहनों के माध्यम से सारण भेजा गया। वैशाली जिला प्रशासन की ओर से अब तक 11,000 पॉलीथीन सीट और 11,500 सूखा राशन के पैकेट सारण भेजे जा चुके हैं। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। श्री यादव ने आज पटना में कहा कि NDA के नेता सिर्फ हवाई सर्वे करके खानापूर्ति कर रहे हैं।
9: बिहार में बाढ़ भी है और साथ में सुखाड़ भी है। काफी फसल जो है किसानों का जो है क्षति पहुंची है। अब तक उसका भी मुआवजा जो है किसानों को नहीं मिला। हमने कई बार जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखा, बात भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव है तो भाजपा को बिहार के लोग याद आते हैं, चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं। बीजेपी के लोग बिहार के लोगों का भला नहीं चाहते, बिहार का भला नहीं चाहते, वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ अपना भला चाहते हैं।
8: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जबकि 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी। 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। सभी 8 सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री और जदयू नेता निशांत कुमार ने पटना और सभी जिलों के स्नातक और शिक्षक मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर जिताने की अपील की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि खुशहाल और विकसित बिहार बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।
10: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आदरणीय श्री नीरज जी हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं बिहार के और पटना जिले के सभी अपने स्नातक वोटर और शिक्षक वोटर से अपील करता हूं कि आप हमारे एनडीए प्रत्याशी को भारी वोट से जिताएं। आपका ये वोट शिक्षा की लौ को जगाने के लिए होगा, बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए होगा।
8: विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में टकराव खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने परिषद की 8 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजद ने भी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। कांग्रेस ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट से वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा को मैदान में उतारा है। इसी सीट से अब राजद ने भी कुंवर राय को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद कुंवर राय को पार्टी का सिंबल सौंपा। श्री राय राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मधुबनी जिला के संगठन प्रभारी भी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के बीच श्री नवीन का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर रणनीति बनाएंगे। कटिहार में जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थायी कार्यालय खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने आज कटिहार में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश विरोधी गतिविधियों, संभावित घुसपैठ और तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी मजबूत होगी।
11: कटिहार एक तो चिकन नेक के नजदीक है, बगल में मालदेह, फरक्का, धुलियान और इस तरह का जो है बंगाल बॉर्डर होते हुए बांग्लादेश का भी बॉर्डर है। तो कटिहार को हम लोग बहुत ही सेंसिटिव इलाका में भी मानते हैं और इसीलिए सेंट्रल आईवी का ऑफिस यहां पर खुलेगा और सेंट्रल आईवी के सभी ऑफिसर यहां रहेंगे। और अगर किसी तरह का देश विरोधी गतिविधि हो या इस तरह के कोई भी और भी इंटेलिजेंस को जो है इनपुट मिलेगा तो कार्रवाई में आसानी होगी, इसलिए हमने यहां पर ऑफिस खोलने के लिए सरकार को जो है प्रस्ताव में जमीन दिया है।
8: दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने कल पटना में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के घेराव की घोषणा की है। मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थी पिछले 7 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने 1799 पदों के लिए तत्काल शारीरिक परीक्षा की तारीख जारी करने और मुख्य परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लेने की मांग की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
12: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत ITI के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
13: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत ITI में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी ITI की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 ITI को चुना गया है। इनमें 172 हब ITI और 678 स्पोक ITI शामिल हैं। योजना के तहत 200 ITI क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 ITI क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान और इलाज से मरीज को गंभीर स्थिति से बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने पटना के महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर और टीबी जागरूकता एवं रोकथाम अभियान की शुरुआत करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टीबी जैसी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्यपाल ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता जरूरी है।
14: बिहार के अंदर कितना जोर सरकार दे रही है अवेयरनेस के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, बीमारियों के लिए, खासतौर पर जो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में जानकारी पाइए, अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए और ज्यादा जानकारी दीजिए और जल्द से जल्द जब भी आपको महसूस करें, किसी तरह के सिम्टम महसूस करते हैं तो अपने आप को टेस्ट करें।
8: केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुंगेर दौरे के दूसरे दिन हवेली खड़गपुर प्रखंड की बरुई पंचायत और परसंडो गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। श्री सिंह ने परसंडो में ग्रामीणों की मांग पर सांसद मद से इंडोर और आउटडोर जिम और विधायक मद से पुस्तकालय निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज जीविका से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।
15: आज हमारे गांव की महिलाएं मजबूत हुई, जीविका समूह को कैसे आजीविका उसको मिले इसके लिए भी उन्होंने प्रयास करना शुरू किया और जगह जगह उन्होंने जीविका समूह को काम दिया। जीविका दीदियों के और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो बहुत अद्भुत काम किया।
8: कांग्रेस ने अजय कुमार पासवान को बिहार के मीडिया और प्रचार विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद श्री पासवान की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है। जहानाबाद निवासी श्री पासवान पूर्व में कांग्रेस में SC/ST विभाग के राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। बिहार के पैरा तैराक शम्स आलम का चयन जापान में 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल में हुआ है। इस प्रतियोगिता में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज गया जी के सीताकुंड में फल्गु नदी के पावन तट पर विधिवत तर्पण और पूजा अर्चना की। श्री कुमार ने अपने पितरों के साथ राष्ट्र की रक्षा में शहीद हुए जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य दिवंगत आत्माओं की शांति और सदगति के लिए तर्पण किया। प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। विभाग ने 6 अक्टूबर को अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। भागलपुर के सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर अकबरनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के समीप 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। किशनगंज में पुलिस ने पुठिया थाना क्षेत्र के बरी सुहागी, गुआबारी और धोवीडांगा समेत कई घाटों पर छापेमारी कर अवैध बालू खनन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मामूली सुधार। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस का टकराव खुलकर सामने आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी रणनीति के लिए कल पटना आएंगे। कटिहार में इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थायी कार्यालय खोला जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। और एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
16: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से सभी सुनने वाले आदरणीय श्रोताओं को नमन है, प्रणाम है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेडियो रिमझिम परिवार का यह कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी के विचारों पर, सुझावों पर इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करते हैं। प्रत्येक रविवार को शाम को 7:45 से और सोमवार को सुबह 7:10 पर अपने जिले के और दूसरे प्रदेशों से, देश के कई भागों से हमारे आदरणीय श्रोताओं का संदेश आता है। यह संदेश मिला कार्यक्रम रेडियो रिमझिम के स्थापना काल से ही हम प्रसारित करते हैं। मेरा मानना है कि हमसे बेहतर हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो हमें सुझाव देते हैं, नए नए आयाम गढ़ने की प्रेरणा देते हैं और किस तरह का कार्यक्रम सुनना चाहते हैं अपना सुझाव देते हैं। हम उसी के अनुरूप काम करते हैं। सदैव एक सेवक के रूप में, एक प्रसारणकर्ता के रूप में हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे आदरणीय श्रोता हैं एक से बढ़कर एक सुझाव देते हैं, हम उनके बातों पर अमल करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम एक खुला मंच है जिस पर आपके विचारों को लेकर हम अपने कार्यक्रम को आने वाले समय में पिरोते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों का सुझाव जो है मूल्यवान होता है रेडियो रिमझिम परिवार के लिए। जब से रेडियो रिमझिम की स्थापना हुई तब से आज तक जो भी परिवर्तन हुआ है आप लोगों के विचारों से, आप लोगों के सुझावों से। एक दौर था जब रेडियो रिमझिम सुबह 6 से 10, दोपहर 12 से 3 और शाम को 5 से 10 तक केवल अपना प्रसारण करता था, और आज के दौर में 24 घंटे हम अपने प्रसारण को जारी रखते हैं। रेडियो पर सुबह 5 से रात को 11:10 तक और ऐप के माध्यम से 24 घंटे अपना प्रसारण करते हैं। हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता जो अपने क्षेत्र के हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए जाते हैं और वहाँ भी रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं। कभी हमारे पास सूचना आता है कि हम जो है लेह लद्दाख में सड़क जो बन रही है वहाँ काम कर रहे हैं, तो कभी तमिलनाडु से, तो कभी विदेशों से हम तक यह सूचना पहुंचती है। हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम हैं, देश विदेश और प्रदेशों से लोग जुड़ते हैं। रेडियो रिमझिम गोपालगंज का एक नाम है। गोपालगंज जैसे शहर में स्थापित होकर आज पूरे दुनिया में अपनी आवाज को पहुंचाता है। इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है हमारे श्रोताओं का है। वे हमारे पास जब सुझाव भेजते हैं तो हमसे भी ज्यादा जानकार और जो विशेषज्ञ लोग हैं, हम उनसे उन बातों पर चर्चा करते हैं, उनके सुझावों पर अमल करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। रेडियो रिमझिम में हमारे जो युवा साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके बदौलत ही हम अपने प्रसारण को 24 घंटे जारी रख सकते हैं। मनुष्य का शरीर जो है, एक समय आता है कि कभी मनुष्य जो है 16 घंटा 18 घंटा काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ यह जो समय है धीरे धीरे कम होने लगता है। शारीरिक क्षमता जो है जवाब देने लगती है। उस समय जो है व्यक्ति का काम करने का समय जो है छोटा होते जाता है। हमें पता है कि जो सजीव है उसे एक न एक दिन निर्जीव होना है। इस दुनिया में पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव जितने भी सजीव हैं, उन्हें एक न एक दिन निर्जीव होना है। लेकिन जब तक हम सजीव हैं, कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, कुछ सामाजिक कार्य करें। सामाजिक कार्य का अर्थ यह है कि हम 5 वृक्ष लगा दिए, 2 गरीब गुरबा के बेटी का शादी में अपना सहयोग दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं है तब पर भी नदी के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, सरकारी भूमि में यदि 10 पौधा भी लगा देते हैं तो यह जो है एक कल्याणकारी कार्य हो जाता है। आज हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाया था जिसका आनंद हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ईंधन के रूप में लेते हैं, फल और फूल के रूप में लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ न कुछ करते जाएं। घर द्वार मकान जो है हम अपने लिए बनाते हैं, अपने अंश और वंश के लिए बनाते हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्य करते हैं वह जो है पूरे समाज के लिए होता है। जिस तरह वर्षा का पानी, सूर्य का प्रकाश सभी व्यक्ति को बराबर मात्रा में मिलता है, चाहे वह महल हो, झोपड़ी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, उसी तरह जो सामाजिक कार्य होता है वह सबके लिए वरदान साबित होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, व्यक्ति मन से अमीर और गरीब होता है। एक बार पढ़ने के समय अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर थे दुबे जी, उन्होंने बताया था कि आमदनी आपकी कितना ही हो लेकिन यदि आप खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो बाजार जो है नीचे के तरफ जाता है। इसलिए व्यक्ति के पास धन होने से मन बड़ा नहीं हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि झोपड़ियों में खुशियां छलकती है और महलों में आंसू गिरता है। यह जो है कुदरत का करिश्मा है। हर व्यक्ति के पास हर चीज उपलब्ध नहीं रहता है, लेकिन जो जीवन का एक मूल्यांकन है, हमने पाया है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषता देकर ईश्वर जो है जन्म देते हैं। किसी बच्चा में पढ़ाई के प्रति बहुत भूख होता है तो किसी बच्चे में तकनीकी रूप से काफी सक्षम होते हैं, तो कोई बच्चा जो है स्मरण काफी लंबे समय तक किसी वस्तु का या विषय का रखता है। तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग चीज है। शिक्षा एक प्रकाश है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ यदि नम्रता विनम्रता नहीं है तो वह शिक्षा बेकार है। शिक्षा हमें दया भाव करने का अवसर देता है, शिक्षा हमें विनम्र बनाता है, शिक्षा हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। केवल सरकारी नौकरी पा लेना शिक्षा नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा में हम किसी तरह निकल गए, उसके बाद हम साहेब बन गए, यह जो है कोई ऊंची चीज नहीं है। हमने कई ऐसे अधिकारियों को देखा है जो बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उनका जीवन सादा, सोच बड़ा होता है और वह जनमानस के कल्याण के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं। कई ऐसे अधिकारी भी मिले हैं जो सोचते हैं कि हमें भगवान ने एक अवसर दिया है बेहतर कार्य करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि केवल जितना बिटोर सके। आज जब हम किसी कब्रगाह में या शमशान घाट में 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो वहां देखते हैं कितना ही कब्र और कितना लोग जो है इस शमशान पर चले गए, जो करोड़पति थे, अरबपति थे, खरबपति थे, कभी थार से और कभी मोटा मोटा सोना का चैन पहने हुए लोग थे, जो आज मिट्टी में दफन है। लेकिन जो समाज के लिए कुछ कर गया है उसे लोग आज भी अपने दिलों में रखते हैं। ना उसकी मूर्ति बनी, ना उस पर माला चढ़ा, लेकिन उसके किए गए कार्य जो है गांव समाज जो है अपने दिलों में रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसे याद करते हैं। तो मेरा मानना है जो जितना में है यदि कुछ बेहतर करता है तो ईश्वर का आशीष जो है उसे मिलता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का बहुत सारा संदेश भी आया है। मेरे साथ सोनू जी बैठे हैं जो प्रत्येक सप्ताह आपका संदेश मिला में बैठते हैं और उनके पास आपका संदेश आया है, तो मैं वादा करता हूँ कि पूरे ईमानदारी और सच्चाई से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न जो आया है सोनू जी पढ़ रहे हैं।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास पहुंचा हुआ है उमेश प्रसाद जी का गोपला मठ से। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूं। मुझे सुबह का भजन और हालचाल काफी अच्छा लगता है। पिछले दिनों लगातार 4 दिनों तक बारिश होता रहा। मेरा आग्रह है कि इस तरह की आपदा की सूचना मौसम विभाग से या घटित होने से पहले रेडियो से दिया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय उमेश बाबू, आपके परिवार को और पूरे गोपला मठ ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम को लगातार और लंबे समय से सुनते हैं, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ प्रसारित कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, यह हमारी उपलब्धि है और आप लोगों के सुझाव के बल पर ही कार्यक्रमों का क्रिएशन या निर्माण जो है हम कर पाते हैं। सुबह के समय में भजन से रेडियो रिमझिम की आकाश होती है और उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दिन के अनुसार कार्यक्रम बदलते रहते हैं, जो पुराने हुए उनके जगह पर नए कार्यक्रम आ जाते हैं और समय के साथ रेडियो रिमझिम अपने स्वरूप में, स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन लाया है। और हालचाल के बारे में आपको पता ही है कि रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे रेडियो रिमझिम पर प्रसारित होता है और हालचाल गोपालगंज के नाम से यूट्यूब पर भी इसको रात के 12 बजे के पहले हमारी टीम जो है डाल देती है, ताकि जो रेडियो पर नहीं सुन सके वह हालचाल गोपालगंज जो है अपने मोबाइल पर अपने सुविधा के अनुसार सुन सके। इसके अलावा जिन कार्यक्रमों की बारे में आपने बताया उन पर हम विचार कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाए। और आपने बड़ा ही मनमोहक एक सुझाव दिया है कि मौसम विभाग से सूचना लेकर किसी भी आपदा की सूचना दी जाए तो हमें याद है 19-20 में भूकंप आया था, तो उस तरह की सूचना जो है रेडियो रिमझिम लगातार 3 दिनों तक चलाया। जिला अधिकारी महोदय उस समय श्री कृष्ण मोहन जी थे, उनका भी आदेश आया था कि मौसम विभाग से लेकर इस तरह की सूचना दी जाए। यह जो 4 दिनों का लगातार बारिश हुआ और तेज हवाएं चली, इसकी भी सूचना आपदा विभाग से आपके मोबाइल पर तो आता ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि रेडियो रिमझिम पर भी इस तरह की सूचना हम प्रसारित करें। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि आज के दौर में इतने लंबे समय में घर घर की आवाज जो है रेडियो रिमझिम 90.4 बन चुकी है। और आप लोग भी बेहिचक जब अपना कोई बात या सुझाव देते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि आगे वाले समय में उसका अनुपालन हम करें। तो हम इस पर विचार करेंगे और आपदा विभाग से, मौसम विभाग से हम संपर्क करेंगे कि आने वाले समय में यदि किसी तरह की कोई आपदा आती है तो हम भी सूचना देते रहें। वैसे बाढ़ का समय है, आप लगातार हालचाल के माध्यम से इसकी तत्कालिक सूचना प्राप्त करते रहते हैं। उसी तरह कोई भी घटना हो उसकी सूचना हम देते रहेंगे और आपका मूल्यवान सुझाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम इसका अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में इस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है गोपालगंज वार्ड नंबर 14 से राजीव जी का, लिखे हुए हैं, सर नमस्कार, बहुत दिनों तक सोचने के बाद व्हाट्सएप संदेश भेज रहा हूँ। मेरा घर सासा मूसा बाजार के नजदीक पड़ता है, मकान बनाकर रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी गोपालगंज में पढ़ते हैं। आपके यहाँ से पटना से प्रादेशिक समाचार और राष्ट्रीय समाचार का आवाज बहुत धीरे आता है, बाकी सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय राजीव जी, आपका संदेश मिला, मैं आपका संदेश मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पूरे परिवार को और आपके वार्ड वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए आप गांव जवार से थोड़ा दूर हो गए। जीवन में शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि शिक्षा जो है एक रोशनी है, एक प्रकाश है, जो व्यक्ति को अंधेरे से उजाले के तरफ ले जाती है। लेकिन इसके साथ यदि संस्कार हो, विनम्रता हो, दया हो और दूसरे के प्रति प्रेम हो तो यह अनमोल बन जाता है। हम शिक्षा चाहे कितना हूँ ले लें, लेकिन व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, विनम्रता नहीं है तो वह शिक्षा आधी अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा ताकत जो है धैर्य होता है, सहनशीलता होता है, दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है और इस पर अमल भी करना चाहिए। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, विरोधी हैं, लेकिन उसके बीच में तरक्की भी करना है, प्रगति भी करना है। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, शहर हो या गांव हो, आप जमीन लिखवा लिए, कागज पत्र सब ठीक है, लेकिन जब मकान बनाने जाइएगा तो जितने सोए हुए भूत हैं सब जग जाएंगे, अगल बगल नापी शुरू हो जाएगा, कोई ईंटा आने का रास्ता में व्यवधान डालेगा तो कहीं बालू में परेशानी होगी। लेकिन तमाम कठिन के बाद यदि आप मकान बना लेते हैं तो उसमें जो सुख और सुकून मिलेगा वह जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि आप कितना हूँ जगह घूम लें, कितना हूँ पहाड़ और नदियों के किनारे चले जाएं, लेकिन जो सुख और शांति अपने मकान में या अपने घर में मिलता है वह जीवन में कहीं नहीं मिलता है, और वह जो है नींद भी कहीं नहीं मिलता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो आदरणीय श्रोता बंधु, आपने जब इतना बड़ा त्याग किया, बच्चों के पढ़ाई के लिए गाँव छोड़कर शहर में आ गए हैं, तो उनके पढ़ाई के साथ साथ जो पारिवारिक संस्कार है उसे जरूर दीजिए। और रेडियो रिमझिम को आप लगातार और लंबे समय से सुनते हैं और संदेश दिया, इसके लिए एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं। आपने सुझाव दिया है कि प्रादेशिक समाचार और राष्ट्रीय समाचार सुनने में आवाज जो है धीमी हो जाती है, तो आपको बताते चलें, प्रादेशिक समाचार हमें पटना से मिलता है और राष्ट्रीय समाचार नई दिल्ली से प्राप्त होता है, नई दिल्ली आकाशवाणी से। तो वह जिस तरह जिस स्वरूप में आता है उसी तरह उसी स्वरूप में हम आप तक पहुंचाते हैं। जब वहाँ आवाज कम होती है तो हमको कम मिलता है। हमने इसके लिए आकाशवाणी पटना को संदेश दिया है कि वहाँ यदि कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। उसकी प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और हमारा काम यही है कि उधर से लेकर आप तक पहुंचाना, और जो हम प्रसारित करते हैं उसके आवाज में यदि कहीं कोई कमी है तो हम तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरे से लेकर दूसरे को देना है उसमें हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह त्रुटि बहुत जल्द खत्म होगी और आपको प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार भी रेडियो रिमझिम के लेवल पर प्राप्त होगा। आपने सूचना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी सर। अगला संदेश पहुंचा हुआ है, सकीना खातून ठावे सिमरा से भेजी है। रेडियो रिमझिम टीम को सलाम, योर वॉइस योर चॉइस, हेलो माय चॉइस, एसएमएस फरमाइश, काफी अच्छा लगता है। मेरा गुजारिश है कि जो 12 बजे कार्यक्रम शुरू होता है वह 11 बजे किया जाए और सप्ताह में 2 दिन गाने फरमाइश करने का मौका दिया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा सुझाव आपका है, योर वॉइस योर चॉइस, आपकी पसंद आपकी गीत कार्यक्रम में सप्ताह में एक दिन इसलिए रखा गया है कि हमारे श्रोताओं की संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है। कई हमारे श्रोता जो है दूसरे प्रदेशों से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से रेडियो रिमझिम का ऐप मिल गया और वे भी फरमाइश करते हैं। तो जो हमारे आरजे हैं वह उनकी फरमाइश भी पूरी करते हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष एक है और कहीं से कोई फरमाइश करता है उसे पूरा करना हमारे आरजे का या हमारी टीम का या नैतिक धर्म है। इसलिए इस कार्यक्रम में सप्ताह में एक व्यक्ति एक बार अवसर दिया गया है ताकि सभी लोगों को बारी बारी अपनी बात रखने का अवसर मिले। हम नजदीक के हैं या दूर के हैं, रेडियो रिमझिम सबका है। जिस तरह हवा, सूर्य का प्रकाश और वर्षा का पानी यह सबका होता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम जो भी श्रोता हमें सुनते हैं, अपनी फरमाइश करते हैं, हमारे आरजे जो है उसे पूरा करते हैं। तो अभी तत्काल में यह संभव नहीं है, सप्ताह में एक दिन ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जो है अपनी फरमाइश पूरी करा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हेलो माई च्वाइस कार्यक्रम में आप जो है बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, उसमें इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और बहुत सारे लोग कराते भी हैं। और जो रेडियो रिमझिम परिवार की बच्चियां हैं आरजे के रूप में, वे उनका रिकॉर्डिंग करती हैं, उस पर किसी तरह का बैंड नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, एसएमएस फरमाइश, योर वॉइस योर च्वाइस, उसमें इस तरह का बंधन हम लोग आप लोगों के सुझाव से लगाए हैं। हम लोग कोई नियम बनाने वाला बहुत बड़ा नियम करता नहीं है, लेकिन श्रोताओं का ही सुझाव आया था कि सर सप्ताह में एक व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए, और यह हमारी मैनेजमेंट टीम को सुझाव पसंद आया और उसी के आधार पर आज लंबे समय से इन सब कार्यक्रमों का बंधन हम लोग बनाए हैं। वैसे अन्य कार्यक्रम भी सुने, उसमें भी भाग ले, काफी अच्छा लगेगा जब समाज के हर वर्ग हर उम्र के लोग अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो रिमझिम परिवार आप सबका है और हम लोग आप सबके सेवक हैं। और हम ऊपर वाले मालिक को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को आवाज के माध्यम से सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है मीरगंज लोहर पट्टी से समीर कुमार जी का। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम का प्रत्येक कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर जो नाटक के रूप में स्वच्छता कार्यक्रम, विक्रम बेताल और सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हेलो क्यूज कंटेस्ट का समय बढ़ाया जाए और कार्यक्रम को नियमित चलाया जाए। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसे नियमित किया जाए। स्वच्छता का तीन ही भाग सुनाया गया, अगला भाग भी सुनाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय समीर कुमार जी, आपके पूरे परिवार को, लोहर पट्टी ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने अपने संदेश में गागर में सागर भर दिया। लगभग आप रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनते हैं, क्योंकि हमें जो सुनता है वही हमारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा कर सकता है, उन बातों को बता सकता है, और आपके संदेश में लगभग लगभग सभी कार्यक्रम जुड़ गए। हम आपको बारी बारी बताते चलें कि समय समय पर रेडियो रिमझिम स्वच्छता के विषय में जानकारी देता है। स्वच्छता जो है 90% बीमारियों को खत्म कर देता है। यदि हम जिस बिछावन पर सोते हैं उसे साफ रखें, जिस कपड़े को पहनते हैं उसे साफ रखें, तो वातावरण जो है धीरे धीरे साफ सुथरा होते जाता है।

0: छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक मजबूत करने के लिए इस तरह की बातों को बताया जाता है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का समय जो है हमें लगता है कि पर्याप्त है, प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा का यह कार्यक्रम होता है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें उम्र बंधन नहीं है। आप चाहे 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, चाहे MA किए हो, किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एक हमारे श्रोता थे सिवान के, जो आजकल जो है फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं, और उनका उम्र भी 28-30 साल से कम नहीं होगा हमें जो उनके आवाज से लगता है, लेकिन वे भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। हमें भी काफी अच्छा लगता है। वह जो है ब्लाइंड है, अंधे हैं, फिर भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और आगे आपने लिखा है सेहत सही लाभ कई, यह कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से रेडियो रिमझिम पर चल रहा है, उसका विज्ञापन चलता है, एपिसोड चलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गोपालगंज रेडियस के 15 किलोमीटर में हमारे जो टीम के लोग हैं वह गांव-गांव में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसे रेडियो रिमझिम के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डाला जाता है कि आज जो है फलाना गांव में गए थे, लोगों से बातचीत हुआ, और लोग भी फोटो रेडियो रिमझिम के नाम पर खिंचवाते हैं, क्योंकि रेडियो रिमझिम इतने लंबे समय से अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए और नैतिकता के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, यदि उनका भरपूर समर्थन मिलता है तो काम जो है आगे बढ़ जाता है। तो सेहत सही लाभ कई का जो एपिसोड है वह जो है जितना बना है सप्ताह में 2 दिन चलाया जाता है, कभी कभार स्पेशल कार्यक्रम आ जाता है तो उसको रोक कर उसे चलाया जाता है। अनिश्चित की कोई बात नहीं है, इसे नियमित चलाया जाएगा। और स्वच्छता का 3 ही एपिसोड हम लोग बनाए हैं, जिसे हम लोग चला दिए हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो उसका जो है रिपीट पुनरावृत्ति हम कर देंगे, हमें भी काफी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है समीर जी कि आप जो है प्रत्येक कार्यक्रम के बारे में अपनी जो टीका टिप्पणी की है वह भी अच्छा लगता है। जो रेडियो रिमझिम को सुनेगा वही इसके कार्यक्रमों के बारे में अपनी बात को रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है सगीर आलम जी का सांसा मूसा पुरानी बाजार से। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को मेरा सलाम है। रेडियो रिमझिम को ऐप से सुनता हूं, शो में जुड़ता हूं। मेरा सुझाव है कि पर्यटन पर भी कार्यक्रम बनाया जाए। पहले बिहार के प्रत्येक जिले की कहानी बताई जाती थी, उसी तरह अपने देश की सभी राज्यों की कहानी बताई जाए, इससे बहुत कुछ जानकारी हासिल हो पाएगा। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय सागिर आलम जी, आपके पूरे परिवार को, सांसा मूसा बाजार वासियों को, ग्राम वासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कार्यक्रम आज से 15 साल पहले चला था और लगभग उसमें 30 जिले की कहानी रेडियो रिमझिम के माध्यम से बताया गया था, वह आज भी आपको याद है। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम जो सुनता है वह हमारा सच्चा साथी है। और बताइए 15-16 साल पहले चले कार्यक्रमों की 2026 में आज चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप लगातार और लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। यह बात सही है कि प्रत्येक जिले की कहानी, वहाँ का वेशभूषा, खान पान, वहाँ की

0: संख्या, वहाँ का लिंग, जेंडर, कितना स्त्री कितना पुरुष, वहाँ के उद्योग धंधे के बारे में उस एपिसोड में बताया जाता था। आपका संदेश सुनने के बाद हमें भी याद आ गया, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस तरह का एपिसोड बनाया जाए जो ज्ञानवर्धक हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक हो, तो इस तरह का कार्यक्रम हम चला सकते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण सुझाव दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला आपका संदेश मिला कार्यक्रम में इसी तरह का विचार भेजते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है धनेश कुमार चौहान जी का, सलेमगढ़ बाजार कुशीनगर से। सर नमस्कार, आपका संदेश मिला में यह मेरा पहला संदेश है। हमारे क्षेत्र के सभी लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, पूरे गोपालगंज की सूचना हमें भी मिलती है। हम गीतों का कार्यक्रम बेहद पसंद करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम में जुड़ते हैं। गुजरात में रहते हुए भी ऐप से सुनते हैं। हेलो क्यूज कंटेस्ट में जुड़ने का नंबर बताया जाए, संदेश मिला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय धनेश जी, आपके परिवार को, आपके सलेमगढ़ कुशीनगर के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है जो मन और चित प्रसन्न हो गया। आदरणीय चौहान साहेब, सलेमगढ़ बाजार और गोपालगंज जिले में कोई खास अंतर नहीं है, बथनाकुटी और सलेमगढ़ में भी कोई अंतर नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं। अरे, जिला बदल गया, प्रदेश बदल गया, लेकिन एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खान पान सब तो एक ही है। आपका संदेश जो है, यह पहला संदेश है, धीरे धीरे और संदेश आएगा। कम से कम एक पहला कदम तो आप उठाए। आपका संदेश मिला कार्यक्रम जो है, कई बार हमने कहा है, एक खुला मंच है, इसमें सभी लोगों के विचार को आना चाहिए। हम कोई बहुत बड़े दार्शनिक या विद्वान व्यक्ति नहीं हैं, एक आम आदमी हैं। आप ही लोग के परिवार और घर से निकला हुआ व्यक्ति हैं। काम करते करते जीवन का एक अनुभव हो गया, एक प्रसारणकर्ता के रूप में, और हम चाहते हैं कि आप लोगों का विचार और सुझाव हमको मिलता रहे। हमारे अंदर भी शिक्षा की भूख रहती है कि और कुछ नया सीखे, और कुछ नया सीखे। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, उसे कुछ रोज नया सीखना चाहिए, चाहे वह सीखने की कला अपने से जूनियर बच्चों से हो या सीनियर लोगों से हो, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। जीवन में जब व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, बोलना छोड़ देता है, चलना छोड़ देता है, तो वह जो है मूरत के रूप में हो जाता है। उम्र चाहे कोई भी हो, व्यक्ति को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। आपने कहा कि आपके क्षेत्र के लोग सुनते हैं, यह जानकर काफ़ी अच्छा लगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन आप भी जुड़ते हैं, यह तो और अच्छी बात है। रेडियो रिमझिम के प्रसारणकर्ता होने के नाते हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रमों में जुड़े। और तीसरी जानकारी आपने दी कि आप गुजरात में रहते हुए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, यह सुनकर अच्छा लगा। लेकिन एक आग्रह करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के हो या वहाँ के हो, उन्हें भी बताइए कि हमारे गांव जवार में रेडियो रिमझिम है, जो ऐप के माध्यम से आप गुजरात में सुन सकते हैं और दूसरों को भी बताइए कि गूगल के प्ले स्टोर में रेडियो रिमझिम का ऐप है, आप सुने। इसके अलावा प्रतिदिन आप देखते होंगे रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, उस पर जो भी हम लोग गांव-गांव में घूम घूम के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम करते हैं उसका तस्वीर भी हम लोग डालते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि रेडियो रिमझिम केवल स्टूडियो के अंदर बैठकर बोलता नहीं है, गांव और समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके करीब भी जाता है। और चौथी बात, आप बोले कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़ने का नंबर क्या है, तो इसके पहले मैं बताते चलूं, रेडियो रिमझिम का फेसबुक जब आप खोलिएगा तो वहां पर एक पोस्टर दिया गया है और जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, कब चलते हैं, उनका नंबर क्या है, वह सब लिखा गया है लाल रंग में कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर यह है, SMS फरमाइश का नंबर यह है, यानी जो जो कार्यक्रम है सबका सीम जो है अलग है और नंबर अलग है, उस नंबर पर फोन करके आप जुड़ सकते हैं। चूंकि आपका संदेश मिला में आपने प्रश्न उठाया है कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर बताया जाए, तो इसका नंबर है, नोट किया जाए, 800-299-4921। एक बार हिंदी में बोल देते हैं, 800-299-4921। तो इस नंबर पर केवल रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच आप फोन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, सोनू जी का इशारा है कि समय की आवृत्ति हम पार कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत रहकर कार्यक्रम को करना है, तो आपका संदेश मिला कार्यक्रम से अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और बेहतर समाज निर्माण में अपना योगदान देते रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84-14-28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98-527-88-291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुनो दिल से
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह एमबीबीएस एमएस जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
5: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
5: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
5: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
9: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और लीजिए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाश
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा
3: बदलते नए रास्ते खुले से उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हुर्मुज जलरंभ मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
4: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
5: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
3: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
3: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की तेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
7: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
8: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
7: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जनस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
9: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
7: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुरमुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
10: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
3: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, एक्सटर्नल
11: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
13: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
12: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
13: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
12: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
13: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
12: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
13: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
12: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
13: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
12: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
12: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
18: अब
12: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
17: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
17: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
17: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
12: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बच्चों के विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, सब्जी खरीदने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, शराब तस्करी और अन्य मामलों में महिला सहित 31 लोग 24 घंटों में गिरफ्तार, ऑटो चोरी कांड में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बच्चों के विवाद को लेकर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीतगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल शशि भूषण शाह को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान लाठी डंडे और तलवार से एक दूसरे पर हमला किया गया। घटना में दोनों पक्षों से कई लोग जख्मी हैं। घर से सब्जी खरीदने जा रहे एक युवक पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि युवक के पीठ में चाकू से वार किया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घायल का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामला सिरीपुर थाना क्षेत्र के मगहा गांव का बताया जा रहा है। इस घटना में घायल मगहा गांव निवासी आश मोहम्मद शाह के 22 वर्षीय पुत्र याकूब आलम का फिलहाल इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि याकूब आलम सब्जी खरीदने के लिए डेरवा बाजार गया था। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान एक युवक ने चाकू से उसके पीठ पर वार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार घायल याकूब आलम का पहले से कुछ लोगों के साथ विवाद और मारपीट हुआ था, शायद इसी को लेकर इस घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि हमले के वास्तविक कारणों का अब तक पुलिस स्तर से आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। सिरीपुर थाना की पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है, साथ ही हमलावरों की पहचान के साथ ही घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का भी पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि इसी बीच गोरखपुर जाते समय रामाधार शाह के पुत्र शशि भूषण शाह की मौत हो गई। दूसरे पक्ष से विजय शाह, उनकी पत्नी सीमा देवी और उनके पुत्र अर्जुन कुमार समेत अन्य लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं शशि भूषण शाह की पत्नी मालती देवी भी इस मारपीट में घायल बताई जा रही हैं। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। साथ ही इस पूरे कांड को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आज शराब तस्करी सहित कई अलग अलग मामलों में पिछले 24 घंटों में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें एक महिला भी शराब तस्करी करते हुए पकड़ी गई। उत्पाद पुलिस ने कुर्म टोला में कार्रवाई की, जहां कुचायकोट के कुर्म टोला से राकेश रंजन को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से लगभग 25 लीटर देशी शराब मिली है। इसकी हीरो मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। यह आरोपी कुचायकोट क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके शराब और गाड़ी को जब्त कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उत्पाद पुलिस ने एक डंगा चेक पोस्ट पर भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक महिला सहित दो लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग किंग फिशर स्ट्रॉन्ग बियर 60 बोतल लेकर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इसमें एक आरोपी मंटू कुमार और दूसरी महिला ज्योति देवी, ये दोनों उचका गांव के बलेसरा निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी राजू मियां उर्फ राजा हुसैन, दूसरा साबिर मियां पिता राजू मियां उर्फ राजा हुसैन और तीसरी एक महिला है। तीनों को कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पहले से आरोपी अरबाज अली पिता अहमद मियां साकिन खवाजेपुर थाना जादोपुर पर चोरी का मामला दर्ज था, तभी इसे माझा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हथुआ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी आरोपी अभिषेक यादव पिता रामबाबू यादव साकिन अटवा दुर्ग थाना हथुआ को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक दूसरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी नीरज यादव पिता हरेंद्र यादव, दूसरा मैनेजर यादव पिता त्रिभुनाथ यादव और तीसरा हरेंद्र यादव पिता सुखलाल यादव, ये सभी अटवा दुर्ग थाना हथुआ के रहने वाले हैं, इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह से पुलिस ने कुल 31 लोगों को अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार किया है। इसमें चोरी के मामले, हत्या के प्रयास के मामले, NDPS एक्ट और SC ST एक्ट तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने सरिया पहाड़ के पास हुई एक ऑटो चोरी के मामले का उद्भेदन किया है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि कांड की गंभीरता को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया था और विशेष अनुसंधान टीम ने इस कांड का उद्भेदन किया और बताया कि चोरी किए गए ऑटो को रवि कुमार पिता वशिष्ठ यादव साकिन सलारपुर थाना तरवारा जिला सिवान के द्वारा लाइनर का काम किया गया था और धीरज कुमार पिता उपेंद्र राय साकिन बेतवनिया थाना एकमा जिला छपरा के घर बिक्री के उद्देश्य से ऑटो को रखा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त धीरज कुमार द्वारा भी पूछताछ के दौरान उक्त ऑटो को बिक्री के लिए अपने पास रखने की बात स्वीकार की गई, जिसके बाद सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद लगातार CCTV फुटेज और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान करते हुए आरोपी विनय कुमार पिता नागेंद्र यादव साकिन सरिया पहाड़ को बेतवनिया से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी के निशानदेही पर अरबाज अली सुखारी यादव, ये दोनों भी सरिया पहाड़ सिधवलिया के ही निवासी हैं, इनको भी पकड़ा गया और इन्हीं के निशानदेही पर रवि कुमार और धीरज कुमार को भी बेतवनिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में इन्होंने चोरी किए गए ऑटो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इधर बंजारी के चंद्रा सिनेमा के पास एक वेल्डिंग मशीन की चोरी करने का मामला सामने आया। इस मामले में स्थानीय लोगों के अनुसार एक युवक द्वारा वेल्डिंग मशीन चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान वीरेंद्र राम पिता भोला राम निवासी काकड़ कुंड के रूप में की गई है। मौके पर घटना से संबंधित साक्ष्य भी दिखाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय

0: और कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बच्चों के विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत। सब्जी खरीदने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। शराब तस्करी और अन्य मामलों में महिला सहित 31 लोग 24 घंटों में गिरफ्तार। ऑटो चोरी कांड में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपाल।

अपने लक्ष्य को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो दोस्त उसे पा कर दिखा। अपने लक्ष्य को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो दोस्त उसे पा कर दिखा। लिख पत्थर पर अपनी कहानी को, लिख पत्थर पर अपनी कहानी को, और सागर को बोल है हिम्मत तो इसे मिटा के दिखा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, आई थिंक कोई और ऐसा नहीं हो सकता है जिन्होंने अपने लक्ष्य को उस तरह से हासिल किया हो जितना और जिस तरह से इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ये एक ऐसी शख्स हैं, एक ऐसी लिविंग लेजेंड हैं जिन्हें शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम प्यार से दीदी बुलाते हैं। आज उन्हीं के कुछ चुने हुए 60s के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ और उन्हीं की कुछ बातें, कुछ किस्से आपको बताने वाली हूँ। लता जी ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक ऐसी आवाज दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उनका हर गाना आज भी हम सुनते हैं और जुबान पर हमें याद रहता है। सबसे बेस्ट समय उनकी जिंदगी का 60s ही था। क्यों? क्योंकि यही वो समय था जब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और बड़े मेल सिंगर्स के साथ काम किया था। आज इस शो में जैसा मैंने आपको बताया कि हम लता जी के चुनिंदा कुछ 60s के गाने आपको सुनाने वाले हैं, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज 50 साल पुराना है। और सुना है इस गाने को पहले फिल्म डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। उसे तभी रिकॉर्ड किया जब मदन मोहन जी ने उन्हें काफी कन्विंस किया। माई पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट लग जा गले, वो कौन थी फिल्म से, सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, वेलकम बैक। लता जी ने अपनी जिंदगी के 70 साल दिए हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को। 60s का वो एरा था जिसमें मैक्सिमम रोमांटिक सॉन्ग्स गाए थे लता जी ने, और आज वही 60s के कुछ चुने हुए इनकी लता दीदी की आवाज में गाने मैं आपको सुना रही हूँ। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी इन्होंने गाने काफी गाए थे। करीब 36 रीजनल लैंग्वेजेस में गा चुकी हैं लता जी। वैसे 1965 की गाइड का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में शूट किया गया था ये। आपको पता है गाने के दौरान हीरोइन का रिफ्लेक्शन एक शीशों पे, एक मिरर पे दिखाई देता है, एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लेजेंडरी टेल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जब वो रानी पद्मिनी जो थी, उनका यूं ही एक जो रिफ्लेक्शन था, एक ग्लिम्प्स जो था, वो इसी शीशे में, इसी मिरर में, हॉल में देखा करते थे। ऑल्सो ये गाना देवानंद जी को पसंद नहीं था। जब रिकॉर्ड किया गया था तब उन्हें ये गाना मतलब ठीक ठाक ही लगा था। इट वॉज हिज ब्रदर और ऑल्सो फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद जी जिन्होंने काफी कन्विंस किया था देव साहब को और कहा था कि एक बार शूट तो कर लो, शूट करने के बाद में देखना, मेरा दिल कहता है ये गाना बहुत अच्छा होगा, फिर भी तुम्हें गाना पसंद नहीं आया तो ये गाना हटा देंगे। देवानंद साहब ने अपना दिमाग बदला, शूट किया, और शूट करने के बाद वो समझ पाए कि ये गाना जो था वो कितना बेहतरीन था। तो चलिए ये गाना आपको सुनाते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: चले।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, वेलकम बैक। आज लता जी के 60s के जमाने के कुछ सेलिब्रेटेड गाने लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुना रही हूँ लता जी के 60s के कुछ बेहतरीन चुने हुए गाने। 60s और 70s के दौरान लता जी ने काफी बंगाली और मराठी गाने भी गाए थे। 1967 में उन्होंने अपना कन्नड़ डेब्यू किया था, जिसे बहुत सराहा गया था। अर्ली 1962 में कुछ ऐसा हुआ था जिससे लता जी को म्यूजिक से, संगीत से, उनके पैशन से दूर जाना पड़ा था। एक हादसा जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। क्या आपको पता है किसी ने लता दीदी को जहर देने की कोशिश की थी? आई नो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ, लेकिन ये एक ऐसा किस्सा है जिसे हमेशा से दबाया गया है। हुआ कुछ ऐसा था कि लता जी ने कुछ खाया था जिसके बाद में उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, कई सारे टेस्ट लिए गए, जिसके बाद में ये पता चला कि किसी ने शायद उन्हें जहर दिया है। उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया गया, जल्द से जल्द उन्हें फिर से कॉन्शियस किया गया, क्योंकि वो तो बेहोश हो गई थी। इसके बाद में कुछ 3-4 दिनों के लिए वो काफ़ी सीरियस थी, जिसके बाद में शी केम बैक टू लाइफ। 3 महीनों तक उन्हें ब्रेक लेना पड़ा था जब वो बेड पे ही थी, और उनके घर वालों ने उनकी काफ़ी सेवा की थी। उसके बीच बाद में पता कुछ ऐसा चला था कि उनका कुक, जो कि इस हादसे के बाद भाग गया था, उसका शायद इसमें किसी न किसी तरीके से हाथ था। किसने करवाया था ये कुक के जरिए, ये तो बाद तक भी पता नहीं चला। आपको पता है बॉलीवुड लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी जी रोज आते थे लता जी की हालत पूछने के लिए, बैठ के उन्हें खाना खिलाते थे, पहले खुद टेस्ट करते थे जिससे कि ये पता चल जाए कि फिर से कोई ऐसी कारस्तानी तो नहीं कर रहा है। कहानियां सुनाया करते थे, पोयम सुनाया करते थे लता जी को, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको पता है इतने सारे चाहने वाले, इतने सारे दोस्त लता दीदी के रहे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि एक बहुत ही बुरे झगड़े में पड़ गया था लता जी के साथ। क्या था ये झगड़ा और कौन थे ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, सुनिए जरा।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
13: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज लता जी के 60s के जमाने के कुछ सेलिब्रेटेड गाने लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। इतने सारे गाने थे कि चुन करके ये प्लेलिस्ट बना पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का काम था। आई होप आपको गाने पसंद आ रहे हो। वैसे लता जी की जिंदगी के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो 60s के दौरान काफी डुएट्स किए लता जी ने, मुकेश जी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, सभी के साथ। लेकिन काफी समय तक, उस समय शी वॉज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद मोहम्मद रफी जी। इशू था रॉयल्टी को लेकर के। लता जी चाहती थी कि सिंगर्स को भी गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। 5% की रॉयल्टी जो थी वो उस समय म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को दिया जाता था, कंपोजर्स को दिया जाता था, लेकिन सिंगर्स को नहीं मिलता था। लता जी चाहती थी कि रफ़ी साहब भी उनका साथ दें और सिंगर्स को ये पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए जो लड़ाई है उसमें लता जी का साथ दें। लेकिन रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे, उनका मानना था कि जो फीस डिसाइड की है सिंगर के लिए बस वही ठीक है, बाकी और पैसे नहीं मिलने चाहिए। इतनी तनातनी हो गई थी दोनों के बीच में कि ये तू तू मैं के चलते हुए दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना ही बंद कर दिया था। फिर बारी आई थी डायरेक्टर जय किशन जी की, जिन्होंने बाद में इन दोनों को साथ में एक कमरे में बिठाया, दोनों के बीच में जो बहस थी उसे बंद करवाया और उसके बाद से इन दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ में काम करना शुरू किया। इनफैक्ट रफी साहब ने तो एक रिटन अपॉलोजी भी दी थी लता दीदी को, बिकॉज ही एक्चुअली फेल्ट बैड अबाउट व्हाट ही डिड। चलिए तो फिर ये जो सुपरहिट जोड़ी है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला गाना हम आपको सुनाते हैं उस फिल्म से जो पहली हिंदी फिल्म थी जो 100 दिनों तक चली थी विद 4 शोज अ डे। मैं बात कर रही हूँ आराधना फिल्म की, 3 साल तक थिएटर्स में चली थी अक्रॉस द साउथ इंडिया और प्लैटिनम जुबली हिट हुई थी ये। तो सुनिए इसी फिल्म से अगला गाना।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज लता मंगेशकर जी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 60s का जो वो जमाना था उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 60s के दौरान ही लता जी का एसोसिएशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ शुरू हुआ था। 1963 में शुरुआत हुई थी एंड इट ग्रू स्ट्रॉन्गर ओवर द ईयर्स। कुछ 700 गाने गाए होंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए लता जी ने ओवर द स्पैन ऑफ 35 ईयर्स, और सभी आई थिंक बड़े हिट रहे थे। वैसे आपको पता है कि सभी गानों में कहीं ना कहीं उस समय उर्दू शब्द जो थे उसका इस्तेमाल किया जाता था, और लता जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उर्दू के प्रोनंसिएशंस में। दिलीप कुमार जी ने एक बार आकर के, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं लता जी के, तो दिलीप कुमार जी ने आकर के लता जी को कहा था कि देखिए, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप उर्दू सीख लीजिए। लता जी को ये बात जो थी वो सही लगी। सो इट वॉज दिलीप कुमार जी जिनके कारण लता जी ने एक नई लैंग्वेज ऑल टुगेदर सीख ली थी। आज भी कहते हैं लोग कि इन दोनों का रिश्ता भाई बहन के जैसा ही है, क्योंकि लता जी हर साल दिलीप कुमार जी को राखी बांधती हैं।

चलिए सुनते हैं वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ 60s, आजा पिया तुहे प्यार दूं, फ्रॉम द मूवी बहारों के सपने, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एपिसोड ऑफ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said, it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China, and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
0: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tharapuram in Tamil Nadu, Tattanjavadi in Puducherry and Rijinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Machar. In a social media post, Ambassador Mittal said he is recovering well and in good spirits. He added that the embassy remains in touch with the local authorities and the family and is extending all possible assistance. Iran has said the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets 7 conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media quoted Parliament Speaker Mohammad Bakar Kalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway was completely clear and firm. Separately, Iranian army spokesperson Mohammad Akrimenia said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has claimed that the war with Iran will end very quickly and predicted that oil prices will fall sharply once the conflict was over. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan. The ceremony featured the parade of athletes, lowering of the Asian Game flag and the handover of the ceremonial torch and flag to Doha, host of the 2030 edition. India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda carried the Indian tricolour at the closing ceremony. India finished fourth in the overall medal standings with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37
4: and bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. And with that, we end this news bulletin.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: ए शंभु बाबा, अरे आजकल के सिचुएशन देखो तनी, हई आंगनबाड़ी में बड़ा कुछ पोषाहार बांटा था लेकिन मैं खा जाता रही सब।
1: हाय बबुआ, गावा गाई आंगनबाड़ी स्कूल खुल गई बा, में खिचड़ी बनता।
0: हाँ।
1: लेमन चूस मिलता।
0: लेमन चूस?
1: हाँ।
0: अरे बाप रे, कोई चूसा नहीं आगे ना।
1: नाये बबुआ, हम जाइले तो कहला से ए बाबा ई लड़का सके बताई।
0: अच्छा रहुआ के ना
1: तहरा ना भेटा,
0: बुढ़ारी में खाए तो नस बैठ जाए। हाय हाय हाय आहा, अरे बड़ा गजन होता है।

0: पूछल।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
2: आज तो फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी
2: आज फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी लास्ट में कर रहे हैं।

0: ना, इसीलिए टाइम खत्म होने वाला है।
1: अरे मुझे लगा 12 बज रहा है, 12:30 बज गया।
0: हाँ 12:30 होने वाला है।
1: और हमारा भाई का फोन आया था। अच्छा चले के बाद नहीं।
2: हेलो हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। अर्चित
2: मैम, मुझे गीत सुनना है।
0: गीत सुनना है? कौन सा गीत सुनना है आपको?
2: गाड़ी बजा रही है, सीटी बजा रही है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी? अच्छा जी, आप ठीक है ना?
2: हाँ।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक है, नमस्ते।
0: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: मनोरमा जी बोलते हैं
1: ना? भारती।
0: भारती जी, आज मनोरमा जी ने किया है?
1: ना ना, वो जेल बने, आज ड्यूटी चेंज हो गई बना थोड़ा सा।
0: अच्छा ठीक है, पचपरा से भगा जी बोलते हैं।
1: जी जी, हाँ हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन बताएं।
1: जी हम लोग के ठीक बा।
0: चलिए आज नदिया का पार के गाना सुना दी कौन?
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छा रुआ लगा तो उनमें सुना।
1: अच्छा
0: कहिया सुना है?
1: हमारे

0: काल सुने को मिली
1: थी। ठीक बात, कोनो बात ना
0: जी। और गाना क्यों कैसे नहीं वो करें
1: पूरा सब कोई क्या आदमी का कच्चे सब कोई क्या
0: जी बिल्कुल। और सब ठीक बा ना?
1: हाँ हाँ सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
0: गाना प्ले करता नहीं
1: जी?
0: सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
8: जी हाँ, सुरभि जी।
7: जी जी, कैसी हैं सुरभि जी?
8: ठीक हूँ, आप बताइए।
7: जी हम लोग भी ठीक हैं।
8: रिकॉर्डिंग हो रहा है?
7: जी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है अभी।
8: अच्छा, तो कौन सुनना है?
7: जी बता दीजिए कौन सा।
8: कितना भी कर कम लगेगा,
7: आपकी आवाज करते आ रही है, एक बार और बता दीजिएगा।
8: कितना भी कर लेते हैं आप हमको कम लगेगा।
7: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है
8: आपको? और मैम हमको मेरी बहन है छोटी, उनको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को।
7: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 FM।
8: थैंक यू मैम,
7: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94 एफएम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: लाल बहू बोले
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम लोग का भी ठीक है।
1: फिल्म का नाम है जीगर।
0: बताने की बोल
1: आए हम बराती बारात लेके।
0: जी और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: लोहा है, काश है, गुड्डू है, सूरज है, रंजीत, रविंदर, संजय और आप है, आपका टीम है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghunti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: मधु सर यहाँ से राजू कुमार बोल रहे हैं, साउंड सुनना है।
7: जी जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक हूँ, अच्छा हूँ
7: जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: सारी लाल यादव के कोई नया सॉन्ग बजा दीजिएगा।
7: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी गुरु को।
7: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: ठीक है।

0: ओनली फॉर सुखाना सबे।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: मैडम गाना सुनना है।
1: जी नाम बता दीजिए अपना पहले।
2: शमशेर।
1: और कहाँ से है शमशेर जी आप?
2: पानीपत से।
1: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दिल में टूट गया शीशे का चंद, दिल में टूट गया पत्थर का जवाना था।
1: जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: हाँ सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरे पापा को, जितने सुनने नवान उनको सबको।
1: जी वैसे क्या करते हैं आप?
2: काम करते हैं।
1: काम करते हैं मतलब क्या काम?
2: बोता चुनते हैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है, तो
2: 10 साल का हूँ।
1: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले करे तब?
2: हाँ प्ले कीजिए।
1: जी जी सुनते
2: हैं। थैंक यू मैडम,
1: वेलकम
2: ये गाना प्ले करने के लिए।
1: जी सुनते रहिए रेडियो रमजिन 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।

0: गोपाल ओझा ग्राम का कपासा जिला
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: मक्का की कटाई चल रही है।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
0: और क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज,
1: गर्मी भी पड़ रही है,
0: गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तेज, और मक्का की कटाई चल रही है। और क्या,
1: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए, आप सुनिएगा,
0: गाना सुनना है वो दिल का क्या कसूर फिल्म का, वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
0: सभी को सुनवाएंगे, ये रेडियो सुनते हैं सभी को, रिमझिम वाले को, और सुनील साहू जी, ज्योति साहू, जीतन जी, नरेश प्रजापति को, इनको सुनना।
1: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम, बताना सुनना चाहते हैं मैडम।
1: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: जितेंद्र दागर बात कर रहे हैं, गुना जिला ससमाता मध्य प्रदेश।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैडम जी, अभी रंजन सुन रहे थे।
1: जी, तो कटाई का काम हो रहा है अभी?
0: अभी तो मक्का कटाई चल रही है, मैं तो नगीने का काम करता हूँ, जयपुर में चलता है।
1: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: गाने के बोल है अंशली का, अंशली मेरे अनुमानों के पंख लगा। गाने डेडिकेट भी करना चाहूँगा दोस्तों को, दोस्तों को शेयर करना चाहूँगा, दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा।
1: बिल्कुल, नाम ले लीजिए, बताइए।
0: गोपाल ओझा भी है, सुनील साहू भी है, राकेश है, गोलू है, अतुल है, सारों को रहेगा और आपको रहेगा, और जुड़ी भी छोटा जुड़ रहे हैं, सबको रहेगा।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: पर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: जी आप नॉर्मल में बोल रहे हैं, भारती में बोल रहे हैं?
6: जी मैं भारती बोल रहे हैं।
7: जी जी, हम सुरेश कल बोल रहे थे, निकोरिंग वो जिला देवर झारखंड से।
6: हाँ जी, क्या हाल चल रहा है? और
7: रवा कैसन बानी?
6: हम तो ठीक बानी, रवा बताए रवा कैसन बानी?
7: हम हो गए बिल्कुल ठीक। हुआ
6: क्या होता है अभी?
7: हाँ क्या होता है, जो अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी बात घर में है, रवा से हम पहली बार भोजपुरी में बात करते रहे।
6: हाँ हाँ बिल्कुल,
7: जी जी हमारा से उतना भोजपुरी बोले कि नहीं, क्या होता है हम कोशिश कर भोजपुरी, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी बोलने।
6: जी जी
7: भोजपुरी
6: अच्छा से बोल लेता
7: है, कोशिश कर रहे की कहीं मिस्टेक न हो जाए। आज हम भरत व्यास शर्मा के कोनो निर्गुण सुना दी बता था।
6: निर्गुण तो कुछ नहीं को करें।
7: जी जी, और डेडिकेट रही सबसे पहले रोवा के, जिसने आरजी रेडियो रंजन के आरजी है सब के, और जितने जितने भी लिस्नर आरजी रंजन के सबके सुना होते हैं।
6: जी जी, और गाना प्ले करते नहीं सुनाते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम,
6: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: हम बोल रहा हूँ सिवान जिला घर बोधा छपरा नीतीश कुमार पासवान।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सही हूँ मैम, अपना बताइए।
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: नवरात्रि कहिया हो रहा है?
0: नवरात्रि अभी तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे भी। 11 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाला है।
1: हाँ 11 से 4 होगा। एक गाना सुना।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: जीवतिया माई के साथ लीजिए।
0: अच्छा जी,
1: आपको सुनाना है, पूरा पूरा टीम को सुनाना है।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: वेलकम,
0: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार।
6: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
5: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
6: जी जी, कैसे?
5: हाँ हाँ ठीक है। गाना सुना है मैडम?
6: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
5: और रफी साहब का गाया हुआ है, कोई फूल ना खिलता तो कली भी ना होती।
6: जी जी,
5: ये गाना है रफी साहब का, ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
6: जी
5: हाँ, और ये गाना डेडिकेट रहेगा महावीर जी के नाम पे।
6: जी जी,
5: बहुत आप कॉल अटेंड की है जी मैडम आज।
6: नहीं, हम तो आज शुरू किए हैं थोड़ा लेट से।
5: कितना बजे? 11:18 हम ट्रायल एक बार किए थे, तो आप बिजी बता रहे।
6: हाँ हाँ, थोड़ा सा मतलब लेट से शुरू किए हैं। 5
5: तो वही होगा, 5 हाँ 5-7 मिनट लेट होगा, तो ट्रायल हो रहा था। फिर बीच में एक मतलब हम करीब 11:40 पर ट्रायल किए, तो नहीं होगा। फिर सोचे कि अब जाकर थोड़ा सा ट्रायल कर दे, तो देखे कि अब लग गया। तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम, लेकिन बहुत आप कॉल अटेंड की है आज, इतना कि सारे लोग परेशान होंगे कॉल लगा के। तो ठीक है मैडम, तब ये गाना सुनवा दीजिएगा, कोई फूल ना होता कली भी ना होती, तो फिर आपको गाया हुआ है। ठीक है मैडम,
6: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
5: ओके ओके।

0: हेलो,
1: स्वागत है आप रेडियो 91.4 एफएम।
0: हाँ नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल बैठे?
0: जी मेरा ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया बैठे हमर वो।
0: तब का होता अभी?
1: तो पहचान लेनी हमके।
0: विकास जी।
1: हाँ विकास जी।
0: सब और सब ठीक बा ना?
1: और सब ठीक बैठे। खाना उना हो गया?
0: हाँ हाँ खाना हो गया। नहीं खा अभी?
1: नहीं हमने खाना उना खा ले जा, मछरी रोटी वोटी बनैले रहनी जा, और खतरा रख ले वनी जा। अब छुट्टी रहा ना, गांधी जयंती रहा तो आज 2 अक्टूबर के।
0: गांधी
1: जयंती के सबसे
0: छुट्टी
1: में बा। और बताई उन्हें गोपालगंज में
0: काफी ज्यादा बावे ने, हर जगह से पानी ने पूरा बढ़ल जाता।
1: और कॉल आज एक बार में लाग गया, ज्यादा कोशिश ना करे के पड़ा।
0: कॉल ओभरो से जाता, देखी 12:46 होता।
1: तब आज गाना कौन सा सुनवाए?
0: बता दी कौन सा गाना सुने?
1: अपने पसंद से कोनो भी बजा दे गाना।
0: अच्छा भोजपुरी में सुने की हिंदी में?
1: नहीं भोजपुरी में सुना, हमने के बिहारी है सुनो, हिंदी सुनी।
0: भोजपुरी में भी ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा ना होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना
1: होगा। गाना भोजपुरी मैंने बराबर भोजपुरी ना नु उतना भी सुने ला, हिंदी सुने ला जान दन। बजा दे कोनो भी बजा दे मैंने बढ़िया एकदम सेट सॉन्ग बजा दे।
0: रवि बता दे।
1: हम ही बता दे। मिलेगा तो हम बता देंगे, यही वाली बात है मैडम।
0: ये तो हिंदी में ना है?
1: हाँ हिंदी में बढ़िया है।
0: हाँ, हाँ।
1: दिल के सुकून करे वाला
0: गाना है
1: भोजपुरी, हमेशा तो हम भी सुनबे कर ला। ऐसा
0: गाना क्यों सुनबो करे?
1: सबसे पहले रौदा के सुनवाए हमारे एक दिन सतवान भाई हुआ ना उपटी से गोरखपुर के, और जितना रेडियो रिंग सुनने वाला हूँ सबसे।
0: और गाना है सब प्ले करते हैं।
1: ठीक बैठे सॉरी,
0: रेडियो रिंग
1: गोरखपुर। ओके प्रणाम
0: प्रणाम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है मैडम जी, आप मिल रहे हैं?
6: जी
5: जी जी, बोलिए।
6: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
6: और गाने की बोल?
5: गाने को ले कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी।
6: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसी को सुनवाएंगे?
5: जी जी, सोनी मैम को, रजनी मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है, और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिछिया से। इन सभी दोस्तों को इस गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
6: जी बिल्कुल। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमशन 90.4 FM।
5: धन्यवाद मैडम जी।
6: वेलकम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजील 90.4 एफएम में।
0: हेलो
1: हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजील 90.4 एफएम में।
2: जी जी, मैं उज्जैन जिले के बंडागढ़ तहसील से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण गहलोत।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया जी मैम।
1: क्या करते हैं?
2: और हमारे दोस्त जी सुनील जी साहू जी भी है मधुसूदनगढ़ से।
1: जी
2: हाँ,
1: वैसे आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ, मकान मालिक बनाने का। मकान जब मकान बनाता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
2: जी हाँ,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी हाँ जी हाँ मैम, गाना सुना जी, वो राजा हिंदुस्तानी गाना सुना दीजिए मैम, परदेसी परदेसी गाना नहीं।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: जी जी, सभी रेडियो सुनने वाले को और हमारे मधुसूदन वाले जी साहू जी को।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं
2: जी मैम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैडम
6: जी। नमस्कार।
5: और क्या हालचाल हो रहा है तुम्हारे यहाँ?
6: हेलो,
5: क्या हालचाल चल रहा है मैडम आपके यहाँ?
6: जी हम लोग का तो हालचाल ठीक है और मौसम भी हल्का सा गर्म है, ज्यादा नहीं फिर भी ठीक है।
5: हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म है मैडम।
6: अच्छा, नहीं तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैनेज हो जा रहा है।
5: अच्छा, हमारे यहाँ तो सोयाबीन की कटाई चल रही है तो घाम लग रहा है मैडम।
6: हाँ, तो बाहर इस समय निकलने पे थोड़ा बहुत तो धूप लग ही रहा है।
5: आ जाइए हमारे यहाँ भुट्टा खाने मैडम।
6: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है खाने में,
5: है ना?
6: हाँ,
5: हमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये कह रहा था मुझे गाना सुनवा दीजिए मैडम।
6: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
5: मुझे वो सुनवा दीजिए, जेट की दुपहरी में पाँव जले सही।
6: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: गाना सुनवाना है सुनील साहू जी को।
6: बिल्कुल,
5: चिकनगढ़ वाले।
6: जी जी,
5: ठीक है। कब चलेगा ये?
6: ये आपको चलेगा कल शाम को 5 से 7 के बीच।
5: अच्छा
6: जी, बिल्कुल। आप अपना नाम बता देते तो अच्छा होता।
5: नाम गोलू साहू मकसूदनगढ़।
6: जी जी, बिल्कुल।
5: आपको इंतजार रहेगा मैडम।
6: बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल आपको सुनने को मिलेगा। 5 से 7 के बीच में सुनने को मिल जाएगा।
5: 5 से 7 के बीच में।
6: जी जी
5: मैडम, धन्यवाद आपका।
6: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4।
1: धन्यवाद माइको जी, स्वागत है कॉल उठाने के लिए।
0: जी जी
1: तो भाते जी, क्या हाल चल रहा?
0: हमारा हाल चल रहा ठीक, बराबर बताएं।
1: क्या करे ना, गर्मी में परेशान बनी है, पानी से परेशान बन। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी घर परिवार में सब के ठीक बा।
1: और सब बताए?
0: और सब तो बढ़िया बा एकदम।
1: लिसनर लोग खाली आवाज सुन ला परेशान रहे लोग। एक आज गाना बटे जन्नी
0: बताए,
1: गंगा की कसम मैं हूँ बावड़ा, ये क्या कहते हैं जैकी सड़क पर फिल्म लाया गया है, ये गजरा वाली झुमक वाली लहना वाली, मैं हूँ बावड़ा चावला हूँ बावला।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो ये गाना अपने के मनोरमा जी के तमाम जितना देशों में सब को डेडिकेट बटे जन नहीं, तो गाना सुनावल जा फिर कभी मौका मिली तो बतिया
0: जी। तो गाना रहा प्ले करता नहीं
1: जी, तो सुनाओ के नमस्कार, मनोरमा जी को नमस्कार, सुनने वाला सब दोस्तों के नमस्कार बटे
0: जी। तो रेडियो रूम जी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आई प्रोग्राम में इंतजार करता नहीं।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों
1: पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।